印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

度德里广播电台，现在播送一篇中央邦的民间故事，题目是一位老农与乌鸦。

हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 31।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना अयोध्या कांड भाग 31। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धनपर्व।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-23088718 और 9111-23088719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि

0: 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
4: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
5: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन

0: सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की मजमू तादाद 1468 हो गई है। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश और दरियाओं के किनारे और दूरदराज आबादी से बहकर आने वाली लाशों को तलाश करने में मसरूफ हैं, ताहम खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी दरियाई निजाम के सरचश्मे के नजदीक बनने वाली एक नई रुकावटी झील ने खदशात पैदा कर दिए हैं कि अगर इसमें शिगाफ पड़ा तो शदीद सैलाब का रैला आ सकता है, जिससे तबाही मजीद बढ़ सकती है और जारी इमदाद कार्रवाईयों में मजीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। नेपाल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासिरा जिलों से 800 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इस तबाही के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। वजारत खारिजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबता नहीं हो पा रहा है। भारत उनके बारे में मालूमात हासिल करने और उनके बचाव के लिए फौरी कोशिशें कर रहा है। लापता भारतीय शहरियों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पनबिजली प्रोजेक्टों के कारकुन और सयाहों के ग्रुप भी शामिल हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे भारतीय शहरियों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए फौरी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारिजा नेपाल के हुकाम, दीगर वजारतों, रियासती हुकूमतों, टूर ऑपरेटर्स और मुतालिका इदारों के साथ राबते में हैं। वजारत खारिजा ने लापता अफराद का सुराग लगाने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की खातिर 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। भारत ने अब तक 84 भारतीय शहरियों को बचाया है। इनमें त्रिशूली वन रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट के 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के 21 अफराद शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से भी बातचीत की और उन्हें भारत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वस्ती एशियाई मुल्क के दो रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वो इससे कबल 2015, 2016 और 2022 में इस वस्ती एशियाई मुल्क का दौरा कर चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत का दौरा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में वस्ती एशियाई उमूर के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम और उज़्बेकिस्तान के दरमियान होने वाले मुसलसल दौरे इस बात को जाहिर करते हैं कि भारत के लिए उज़्बेकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है।
2: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज़्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
1: दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे और आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। दोनों रहनुमा विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। ताशकंद से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो मुल्क के माली शमूलियत के मंजरनामे को तब्दील करने की समत एक अहम संग मील है। इस स्कीम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन किया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 3,17,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की इस पहल ने तमाम भारतीय शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को मजीद आसान बनाया है। फी खाता औसत जमा रकम 5,356 रूपये है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 78% खाते देही यानी शहरी इलाकों में खोले गए हैं, जबकि तकरीबन 56% खाते खवातीन के हैं। जनधन खाताधारों को 41 करोड़ से ज्यादा रूपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम ने लाखों अफराद, खसूसन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात को बैंककारी और माली खिदमात तक रसाई फराहम करके

0: उनके सामाजिक और इक्तसादी हालात को बेहतर बनाने में मदद दी है। जनधन, आधार, मोबाइल, जेएम की तसलीस जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना मरकजी हैसियत रखती है, माली इमदाद की बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट मुंतकली का एक मुअस्सर निजाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहल के नतीजे में भारत का माली शमूलियत का इशारिया 2018 में 53.9 से बढ़कर 2026 में 67 हो गया है, जो कर्ज, बीमा, बचत और डिजिटल अदायगियों तक लोगों की बढ़ती हुई रसाई को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम के तौर पर जनधन योजना लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंककारी खिदमात तक रसाई को नई शक्ल दे रही है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी। अमरीका के अपने दौरे के दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वजीर खजाना शिकागो में मुमताज सरमायाकारों के साथ एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और प्राइवेट सेक्टर की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज, सुदूर और आला नुमाइंदों से बातचीत करेंगी। शिकागो में मुंतखब कंपनियों के सीईओज और आला क्यादत के साथ दोतरफा और बिलमुशाफा मीटिंगें भी होंगी। इन मीटिंगों में भारत में सरमायाकारी के मौके, इक्तिसादी हालात और भारत और अमरीका के दरमियान कारोबारी और सरमायाकारी शराकत दारी को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और कैनेडा के मालियात और कौमी महसूलात के वजीर फ्रांसुआ फिलिप शैम्पेन ने कनाडा के टोरंटो में भारत कनाडा वज़राए खजाना माली और इक्तिसादी डायलॉग मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी प्यार और मोहब्बत भरे रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और भाई के लिए दुआएं करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की हिफाजत और उनकी मदद का अहद करते हैं और उन्हें तहाइफ पेश करते हैं।

0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज उज्जैन के आलमी शोहरत याफ्ता महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को खुसूसी तौर पर तैयार करता राखी पेश की गई। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पवित्र गुफा के मुकदस मकाम पर रिवायती छड़ी मुबारक की तकरीब के साथ बाजाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा 57 रोज तक पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो रही है। इस बरस 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को मौसम खराब होने के बाद यात्रा मुअत्तल की गई थी, ताहम छड़ी मुबारक को रिवायत के मुताबिक गुफा तक ले जाया जा रहा है। छड़ी मुबारक महान दीपेंद्र गिरी की सरबराही में कल पंचतरनी पहुँचाई गयी और आज इसको गुफा तक ले जाया जा रहा है, जहाँ खुसूस पूजा सभा का इनेकाद होगा। श्री मुबारक की रिवायती तकरीब के साथ ही इस बरस की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर होगी। खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: केरलम का सबरीमला मंदिर ओनम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ओनम के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद देखी गई। इस साल तिरुओनम दिन के मौके पर ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड ने सीधे ओनम सियाफत का इनेकाद किया। सबरीमला मंदिर माहाना पूजा के लिए अब 16 सितंबर को शाम 5 बजे दोबारा खुलेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर तारीख रकम की है। वो ये मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आर प्रज्ञानंदा ने कल रात अमरीका के सेंट लुई में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन फाबियानो कारुआना को 15-13 से शिकस्त देकर जबरदस्त वापसी की। प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन कारुआना से 6 पॉइंट्स पीछे शुरू

0: बात की, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों रैपिड गेम्स जीतकर सबकत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने मुकाबले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और फोर ब्लिट्स गेम्स को 15-13 से जीत लिया। इस तरह वो $2 लाख का पहला इनाम और अगले साल के ग्रैंड चेस टूर में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल रात सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी वीर चोटरानी को एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दोनों भारतीय खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे। चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद एल शेरबीनी को 3-1 से शिकस्त दी थी, जबकि वेलाविन ने मलेशिया के आइन याओ को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराया था। भारत की खवातीन हॉकी टीम ने कल नेदरलैंड्स में एम्स्टलफेन में 5वें मकाम के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 3-1 से तारीखी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही FIH आलमी कप में भारत की मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने नेपाल में सैलाब से होने वाली तबाही से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की इस हवाले से शहसुर्खी है कि हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई, 1500 से जायद अफराद अब भी लापता, सैकड़ों गैर मुल्की सयाहों से राबता मुनकता, 250 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है कि इसरो ने जारी की नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से मुतालिक तस्वीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतालिक आइंदा दौरे की खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 4 रोजा गैर मुल्की दौरा कल से। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अवलियत के साथ शाये किया है कि वजीर आजम ने भारत से ओलंपिक 2036 खेलों की तैयारियां अभी से शुरू करने पर जोर दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल और तिब्बत के अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब में हलाकतों की तादाद बढ़कर 392 हो गई है, जबकि सरहद के दोनों जानब 1468 अफराद अब भी लापता हैं। मरकज ने नेपाल में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज से अमरीका का 6 रोजा दौरा करेंगी और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग कोमल ऋषभ असावरी में ध्रुपद गायन। कलाकार हैं ममता त्रिपाठी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे ममता त्रिपाठी से गायन। आज आपने सुना राग कोमल ऋषभ आसावरी में ध्रुपद गायन। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता विश्वास।
1: आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने सत्य और अहिंसा को केवल अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि इन्हें एक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जब हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे शब्द उभर आते हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को समझने के लिए केवल उनके आंदोलन को जानना पर्याप्त नहीं है। गांधी जी के विचारों का वास्तविक प्रयोग जहाँ हुआ वह था उनका आश्रम जीवन।

गांधी ने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की। वहां पर उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए जिनका नाम था फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी के लिए आश्रम केवल रहने की जगह नहीं थी, वह एक प्रयोगशाला थी जहां वे ये देखना चाहते थे कि क्या सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, समानता और श्रम और सेवा जैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन वास्तव में जिया जा सकता है। और इसी कारण गांधी जी के आश्रमों को समझना गांधी जी को समझने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। गांधी जी का आश्रम जीवन भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय को करीब से देखा। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोगों को विकसित किया। 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में फिनिक्स सेटलमेंट आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स में रहने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सामूहिक जीवन जिए, श्रम करें और एक दूसरे की सहायता करें। इसके बाद 1910 में जॉन्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना हुई। टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी के समर्थक हरमन कैलान बाग ने गांधी जी और लगभग 70 से 80 लोगों को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खाना बनाना हो, सफाई करना हो, खेती करना हो या शौचालय साफ करना हो, आश्रमवासी स्वयं काम करते थे। यही गांधी जी की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण संदेश था। श्रम से सम्मान मिलता है और श्रम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। भारत लौटने के बाद उन्होंने दो आश्रम स्थापित किए, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 25 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद के कोचरम में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे आश्रम की गतिविधियां बढ़ी, खेती, पशुपालन, खादी और अन्य कार्यों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। यह आश्रम आगे चल के प्रसिद्ध हुआ साबरमती आश्रम के नाम से। अब सवाल यह है कि आखिर गांधी जी के आश्रम में जीवन कैसा होता था। गांधी जी का आश्रम किसी सामान्य हॉस्टल या निवास स्थान की तरह नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना, अपने दैनिक काम स्वयं करना, सामूहिक श्रम करना, सादा भोजन करना, चरखा चलाना, पढ़ना लिखना और समाज सेवा करना, यह आश्रम के जीवन का हिस्सा था। गांधी जी का मानना था कि अगर व्यक्ति अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहेगा तो वह वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपने कपड़े धोने से लेकर सफाई तक का काम स्वयं करते थे। यहाँ तक कि शौचालय की सफाई भी आश्रमवासी स्वयं करते थे। गांधी जी स्वयं भी इसमें पीछे नहीं रहते थे। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जिस काम को हम छोटा समझते हैं वही काम समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना सामाजिक असमानता को जन्म देता है। आश्रम के प्रमुख नियम। गांधी जी ने आश्रम जीवन के लिए कई नियम निर्धारित किए थे। इनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वाद पर नियंत्रण जैसे नियम शामिल थे। भारत में गांधी जी ने शारीरिक श्रम को भी आश्रम के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। आश्रम में रहने वालों से अपेक्षा थी कि वह अपने शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण रखे। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाए, इसलिए आश्रम का भोजन सादा होता था। मसालेदार और विलासितापूर्ण भोजन से बचने की कोशिश की जाती थी। गांधी जी मानते थे इंद्रियों पर नियंत्रण व्यक्ति को आत्मसंयम की ओर ले जाता है। स्वदेशी और चरखा। आश्रम के जीवन में चरखे का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी के लिए चरखा केवल धागा बनाने का साधन

0: 1936 में उन्होंने वर्धा के पास सेवागांव नामक गांव में अपना निवास बनाया। बाद में इसका नाम रखा गया सेवाग्राम, यानी सेवा का गांव। यहां गांधी जी लगभग अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक रहे। सेवाग्राम का वातावरण साबरमती की तुलना में और भी ग्रामीण था। यहाँ गांधी जी का जीवन गांव के सामान्य लोगों के और भी करीब था। छोटे छोटे घर, मिट्टी का वातावरण, सादगी, चरखा, प्रार्थना और सामुदायिक श्रम, यह सब सेवाग्राम की पहचान बन गया। देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और निर्णयों का केंद्र भी सेवाग्राम बना। चार आश्रम एक ही विचार। अगर गांधी जी के आश्रमों को एक साथ देखें तो हमारे सामने चार महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। फिनिक्स सेटलमेंट 1904, दक्षिण अफ्रीका। टॉलस्टॉय फार्म 1910, दक्षिण अफ्रीका। साबरमती आश्रम 1915 में कोचरब से शुरू होकर 1917 में साबरमती पहुंचा, और सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा। स्थान अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, श्रम और सेवा पर आधारित जीवन। आश्रम केवल भवन नहीं था, गांधी जी के लिए आश्रम का अर्थ चार दीवारें नहीं थी, आश्रम एक विचार था, एक ऐसा विचार जहां व्यक्ति पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करे और समाज को बदलने की दिशा में आगे बढ़े। गांधी जी मानते थे कि अगर हम समाज में समानता चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अगर हम स्वच्छ भारत चाहते हैं तो स्वयं सफाई करनी होगी। अगर हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं तो अपने हाथों से काम करना होगा। अगर हम अहिंसक समाज चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार में अहिंसा अपनानी होगी। और अगर हम सत्य की बात करते हैं तो हमें कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देना होगा। यही गांधी जी के आश्रम का सबसे बड़ा संदेश था।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हर्षिता

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है।

நாங்கள் आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की इस खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, जब रिश्ते विश्वास की डोर से बंधते हैं तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर वो होती है जिसे प्यार, विश्वास और सम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संस्कृत दिवस भी है और खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर भी, तो इन सब के बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेकिन पहले आज का सवाल, आपके लिए रक्षाबंधन की कौन सी बात सबसे खास है? कोई ऐसी याद, कोई परंपरा या कोई भावना जो इस त्योहार को आपके लिए स्पेशल बनाती हो? अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यार की ये डोर, बुजुर्गों का साथ, अपनी संस्कृति का एहसास, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी काजल। और रिश्ते बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, एक छोटी सी डोर से बांधा जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही खूबसूरत पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अपनापन का उत्सव है। राखी की उस नन्ही सी डोर में आखिर इतना अपनापन आता कहाँ से है? शायद बचपन की उन अनगिनत यादों से, जब भाई बहन कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन, कभी खिलौने के लिए लड़ाई, कभी चॉकलेट के लिए झगड़ा और अगले ही पल साथ बैठकर हंसी मजाक। लेकिन बड़े होने के साथ रिश्तों की भाषा बदल जाती है। बहन का फोन आता है, खाना खाया, और भाई पूछता है घर पहुंच गई, और बिना कहे भी दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाला ठीक है या नहीं। यही तो रक्षाबंधन का असली अर्थ है। रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का वादा है। आज की राखी सिर्फ ये कहने का दिन नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि ये कहने का दिन भी है कि हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय केवल मिठाई और उपहार न दें, एक वादा भी दें, मुश्किल समय में साथ रहने का, दूर रहकर भी हाल पूछने का, और उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए बचपन वाली शरारतों को दिल में जिंदा रखने का। क्योंकि राखी की डोर कलाई पर कुछ पल के लिए बंधती है, लेकिन उसका प्रेम दिल में जीवन भर रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, दूर रहकर भी दिल के पास रहने में है। राखी की डोर बस एक धागा नहीं, भाई बहन के अटूट विश्वास का वादा है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी बहन से, और रक्षाबंधन यानी वो दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन हर साल कुछ कलाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो राखी के धागे का इंतजार तो करती हैं मगर ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ उन्हें घर तक नहीं आने देती। कोई भाई सीमा पार देश की रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा में खड़ा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी अनजान की जान बचाने में जुटा है, कोई रेल की पटरियों पर यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित कर रहा है, कोई मेट्रो विमान या आपदा राहत सेवा में अपने कर्तव्य निभा रहा है। इनकी बहनों के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि गर्व और इंतजार का संगम होता है। राखी कभी डाक से पहुंचती है, कभी तस्वीरों में बंधती है, तो कभी सिर्फ दुआओं में, लेकिन प्यार वो हर दूरी से बड़ा होता है। और कहते हैं भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, कोई पुलिसकर्मी रात भर जागता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में सेवा देता है, या कोई रेल या विमान सेवा का कर्मचारी अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, तब वो सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि पूरे देश की बहनों की सुरक्षा और मुस्कान की रक्षा कर रहे होते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर उन सभी भाई बहनों को हमारा स्नेह सम्मान और शुभकामनाएं, जिनके बीच दूरियां तो हैं लेकिन दिलों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। यदि आपके भाई सेना बल में या फिर पुलिस, चिकित्सीय सेवा, रेलवे, मेट्रो, विमानन या किसी ऐसी सेवा में हैं जहां ड्यूटी की वजह से वो इस रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए अपना संदेश हमें भेजिए। और यदि आप स्वयं ऐसी सेवा में हैं तो अपनी प्यारी बहन के नाम अपना संदेश लेकर हमें भेजिए। ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, fmgoldga@gmail.com। और या फिर आप रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा सा लिखना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेजिए। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर आपके इन अनमोल संदेशों को अपने हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि रिश्तों की असली डोर दूरी नहीं दिल से बंधी होती है।

अब ये हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म बेईमान से। और दोस्तों 28 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। यह दिन हमें उस भाषा से जोड़ता है जिसे भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला माना जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसके शब्दों में केवल अर्थ नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की संस्कृतियां भी बसी हैं, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और सबसे रोचक बात कि संस्कृत का प्रभाव केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं है, संस्कृत की संरचना इतनी व्यवस्थित है कि आधुनिक समय में भी इसके व्याकरण और भाषिक संरचना पर शोध किया जाता है। तो संस्कृत दिवस इसलिए केवल संस्कृत बोलने या पढ़ने का दिन नहीं है, ये अपनी जड़ों को पहचानने का अवसर है, युवाओं को संस्कृत सीखने और बोलने के प्रति रुचि बढ़ाना भी है। तो आज के समय में जब हम नई भाषाएं सीख रहे हैं, नई तकनीक अपना रहे हैं और दुनिया से जुड़ रहे हैं, तब अपनी प्राचीन भाषाई विरासत को जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक होना अपनी जड़ों को भूलना नहीं बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति लेकर आगे बढ़ना है। और चलिए कुछ ईमेल्स भी आ गए हैं तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। सबसे पहला ईमेल है नवीन भाटिया जी का, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मेरी जो बड़ी बहन है गीता, वो 1991 में अमरावती ट्रेनिंग के लिए

गई थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो वहां जाकर राखी बंधवा लिया। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्यार का प्रतीक होना ही असली रक्षाबंधन है। और ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मेरे लिए राखी की सबसे खास बात सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को महसूस करना है जिसमें बचपन की नोक झोंक, ढेर सारी यादें और बिना कहे एक दूसरे का साथ देने का भरोसा होता है। समय के साथ जिंदगी बदल जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वही मासूमियत बनाए रखता है। और ऐना के बाद चरणदास जी ने भी कुछ लिखा है कि नमस्कार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, मेरे भैया मेरे अनमोल रतन को मैं फरमाइश करने वाला था, आपने शुरू में चला दिया, तो थैंक यू सो मच। और रक्षाबंधन का इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं, जाति मजहब से बढ़कर रक्षाबंधन का त्यौहार है। और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कि इसके पीछे क्यों ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंदिरा और साची की कहानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वो जो लड़ाई थी, युद्ध थी, वो हार रहे थे, तो साची ने एक सीक्रेट धागा इंद्र के कलाई पर बांधा और जो ईश्वर हैं उनकी जीत हो गई। बहुत ही अच्छे अच्छे मेल्स आए हैं और आप आगे भी अभी लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म रेशम की डोरी। और एक और मेल है हमारे सामने, राधा पाठक जी लिखती हैं कि हमारे यहाँ सुबह सुबह दरवाजे पर सोनी सोना बनकर उन्हें खीर से पूजा जाता है, फिर जो खीर बनती है उसी से टीका होता है भाई का और राखी बांधी जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर द मेल, और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, और इस अनमोल अनुभव का सबसे बड़ा खजाना होते हैं हमारे बुजुर्ग। उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी, बल्कि हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव से ऐसी सीखें जुटाई जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। ऐसी ही एक सीख है पैसों की समझ और संतोष का महत्व। आज की दुनिया में कमाने की रफ्तार तो बढ़ गई है, लेकिन बचाने की आदत कहीं पीछे छूटती जा रही है। नई चीजें खरीदना आसान हो गया है, मगर जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना मुश्किल। ऐसे में अगर किसी से सीखनी हो आर्थिक समझ, तो एक बार अपने घर के बुजुर्गों की ओर जरूर देखिए। उन्होंने हमें सिखाया कि कमाई चाहे कम हो, लेकिन हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। पहले बचत, फिर जरूरत, और उसके बाद ही शौक। यही छोटी सी आदत उन्हें हर मुश्किल समय में मजबूत बनाती थी। बुजुर्गों की एक और खूबी थी, वो चीजों की नहीं उनकी उपयोगिता की कद्र करते थे। कपड़े पुराने हो जाएं तो उन्हें संभाल कर पहनते थे, चीजें खराब हो तो मरम्मत करवा लेते थे, रिपेयर करवा लेते थे। उनके लिए सादगी मजबूरी नहीं समझदारी थी। और फिर आती है सबसे बड़ी दौलत, संतोष। तो याद रखिए, पैसा जीवन को सुविधाएं देता है, लेकिन संतोष जीवन को सुकून देता है, और सुकून किसी भी बैंक में नहीं मिलता। और आज जब घर के किसी बुजुर्ग के साथ आप बैठें, उनसे पैसों की नहीं, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की पूंजी जरूर मांगिए। यकीन मानिए, वो विरासत किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। उम्र ने जो खामोशी से सिखाया, वो कोई किताब पढ़ा न सकी। दौलत से नहीं, संतोष से जो जीना सीखा, वही सीख जिंदगी कभी भुला न सकी।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म बातों बातों में। और एक और मेल है मेरे सामने, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट स्नेह का ये पवित्र त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए, आपको भी। और राखी पर उन रिश्तों को भी सलाम जिन्होंने भाई का फर्ज निभाया। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम आते ही आंखों के सामने एक भाई एक बहन राखी का खूबसूरत रिश्ता उभर आता है। लेकिन आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उन रिश्तों की जिसमें खून का रिश्ता तो नहीं था, फिर भी निभाया गया भाई का फर्ज पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म से भाई नहीं होते, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। कभी बड़ी बहन अपने छोटे भाई की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है, कभी चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई सगे से भी बढ़कर साथ निभा जाते हैं। और कभी पड़ोस का कोई बेटा, बचपन का दोस्त, सहकर्मी या गुरु बिना किसी स्वार्थ के हमारी सुरक्षा, सम्मान और खुशियों की चिंता करता है। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते दोस्तों, विश्वास से बनते हैं। राखी केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस रक्षाबंधन पर आइए, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर भाई बनकर हमारा हाथ थामा, क्योंकि दुनिया में सबसे अनमोल वही रिश्ता है जो बिना किसी अपेक्षा के साथ बस निभाता जाता है।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म थी अनपढ़। और दोस्तों आज के खास सेगमेंट एक कदम बुजुर्गों की ओर को भी हमें नहीं भूलना है, तो बुजुर्गों की प्रेम कहानियां साथ निभाने के असली मायने। दोस्तों कहते हैं प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं होता, प्यार वो होता है जब बिना कहे सामने वाले की दवा का समय याद रहे, जब चश्मा ढूंढने से पहले हाथ उसी तरफ बढ़ जाए, और जब 70 की उम्र में भी कोई पूछे चाय में चीनी कम रखूँ ना। जरा सोचिए आजकल रिश्ते कुछ मिनटों में नाराजगी भी नहीं झेल पाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी जिंदगी साथ निभाया है। सुख दुख तंगी अमीरी बीमारी सेहत हर मौसम में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कई दादाजी आज भी बाजार जाते समय दादी जी के लिए उनकी पसंद की इमली या चूड़ियां ले आते हैं। कई दादी जी आज भी सबसे पहले अपने जीवन साथी की थाली सजाती हैं। ये छोटे छोटे काम शायद दुनिया को नजर ना आए, लेकिन यही तो प्रेम की सबसे बड़ी भाषा है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बड़े बड़े उपहारों से जताया जाता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि प्यार रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बसता है। दवा समय पर दे देना, थक जाने पर बिना कहे पानी का ग्लास पकड़ाना, और हर मुश्किल में सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं ना। आज जब दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, शायद हमें थोड़ा रुककर अपने घर के उन दो चेहरों को देखना चाहिए जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, बस उसमें शोर नहीं सुकून है। तो आज घर जाइए, अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से पूछिए कि आपकी पहली मुलाकात कैसी थी। यकीन मानिए आपको सिर्फ एक

कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की पूरी किताब सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच्चा साथ वही है जहां उम्र चेहरे पर बढ़ती है लेकिन अपनापन दिल में हमेशा जवां रहता है। सफेद बालों में भी मोहब्बत का रंग गहरा है, हर झुर्री में उम्र नहीं साथ का पहरा होता है, जो हाथ आखिरी सांस तक थामे रहे, असल में वही प्रेम जीवन का सबसे सुनहरा चेहरा होता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई। और दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आज बेटियां या बहनें सिर्फ रक्षा की अपेक्षा नहीं करती बल्कि अपने भाइयों की सबसे मजबूत रक्षा कवच भी बन रही हैं। वो मुश्किल समय में उनका हौसला बनती हैं, सही सलाह देती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं और कई बार माता-पिता की तरह उनका ध्यान भी रखती हैं। सोचिए, कितने घरों में बहनें अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी करती हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय और मेहनत लगाती हैं। जब भाई किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले उसकी बहन ही कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और आज की बेटियां आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो ये साबित कर रही हैं कि सुरक्षा केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि विश्वास, समझ, साहस और साथ निभाने से भी मिलती है। रक्षाबंधन का असली संदेश भी यही है कि ये केवल भाई का बहन के प्रति कर्तव्य नहीं बल्कि दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और साथ निभाने का वादा है। रिश्ते बराबरी से और प्रेम से और भी सुंदर बनते हैं। तो जरा आज अपने जीवन की उस बहन को धन्यवाद कहना मत भूलिए जिसने कभी आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपका मनोबल संभाला या बिना कहे आपका साथ दिया।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज की खास प्रस्तुति को देते हैं यहीं विराम। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों, यादों, बिछड़ने और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की कहानी है। जी हाँ, फिल्म है इजाज़त। ये एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई खलनायक नहीं है, कोई ज़ोरदार संवादबाजी नहीं है, फिर भी हर खामोशी कुछ कहती है। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी साल 1987 में। और दोस्तों, मैं बता दूँ, आज आपके साथ इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, तो उसकी भी मैं आपको ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। चलिए फिल्म की ओर रुख करते हैं। साल 1987 में ये फिल्म जो थी, इसे निर्देशित किया था गुलजार साहब ने। मुख्य भूमिकाओं में थी रेखा, नसरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल। और कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। महेंद्र यानी नसरुद्दीन शाह एक रात स्टेशन पर रुकते हैं, और अचानक उसकी मुलाकात होती है अपनी पूर्व पत्नी सुधा से, जिसकी भूमिका निभाई है रेखा ने। दो लोग जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, अब उनके बीच सिर्फ और सिर्फ रह गई हैं तो यादें। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिश्ता खत्म हो जाने के बाद प्यार भी खत्म हो जाता है, या फिर कुछ रिश्ते कागज़ पर ख़त्म होते हैं, दिल में नहीं। गुलजार साहब ने इस फिल्म को बहुत अलग ढंग से बुना। कहानी बंगाली लेखक सुबोध घोष की कहानी जतुग्रह से प्रेरित थी, लेकिन गुलजार साहब ने इसे अपने अंदाज में पेश किया है। यहीं से शुरू होती है महेंद्र, सुधा और माया की कहानी। जी हाँ, एक कहानी तीन किरदारों पर है, और इन्हीं की कहानी है। कहानी आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ हम इस फिल्म के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस फिल्म का एक यादगार गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाजत। और अब लौटते हैं उस कहानी के बारे में। जी हाँ, कहानी के बारे में बहुत कुछ हम बता भी चुके हैं। चलिए कहानी के बारे में बताते हैं कि महेंद्र की ज़िंदगी में सुधा जो थी, उसकी पत्नी जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिली थी, उससे पहले थी माया। माया यानी अनुराधा पटेल। माया और महेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माया शादी को अपने रिश्ते की अनिवार्य नहीं मानती, कि ज़रूरी नहीं मानती मंजिल की शादी होना ज़रूरी है। उधर परिवार और परिस्थितियों के दबाव में महेंद्र की शादी सुधा से हो जाती है। सुधा महेंद्र को चाहती है, वह अपने पति के साथ एक सामान्य वैवाहिक जीवन जीना चाहती है। पर महेंद्र जो होता है वो अतीत की यादों में खोया होता है और माया में अब भी मौजूद होता है, उसके बारे में सोचता है। महेंद्र और सुधा का रिश्ता इसलिए धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कई सालों के बाद एक रेलवे स्टेशन पर एक वेटिंग रूम में मिलते हैं। दोनों को अपनी बातें याद आती हैं, दोनों के पुराने रिश्ते होते हैं जो कि आमने सामने हो जाते हैं, पर अब उनके पास पुरानी शिकायतें नहीं होती बल्कि यादें होती हैं और एक दूसरे का वो सम्मान कर पाते हैं। वाकई में फिल्म बहुत ही अच्छी है, पूरी भावनाओं पर कैद है, किस तरह से इंसान की भावनाएं सही होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तीनों किरदार जब कहानी से आप देखेंगे तो तीनों सही लगते हैं, पर फिर भी एक मनमुटाव हो जाता है क्योंकि भावनाएं बहुत कुछ कहती हैं। और इस फिल्म में रेखा, नशरुद्दीन शाह और अनुपमा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। वाकई में फिल्म लाजवाब थी, अपने ज़माने की सुपरहिट मूवी रही। और इसमें आपको एक बात बता दें, इस कहानी में सिर्फ यही तीन किरदार नहीं थे, एक किरदार और भी था जो दिखाई नहीं देता फिर भी पूरी फिल्म में मौजूद रहता है, वो है इस फिल्म का संगीत। बाकी इस फिल्म के जो भी गीत हैं आज भी यूँ कहें कि बिल्कुल ताज़े लगते हैं। और फिल्म इजाज़त का जो संगीत था वो दिया था महान संगीतकार आरडी वर्मन ने, यानी हमारे प्यारे पंचमदा ने, और गीत लिखे थे गुलजार ने। और इस फिल्म के जो मुख्य गीतकार हैं वो सब आशा भोंसले जी ने गाए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत इस फिल्म में। तो चलिए इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, वाकई में आपको भी बहुत कुछ याद आ जाएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है इजाज़त। इस फिल्म के बारे में हम क्या कहें, इसका संगीत भी लाजवाब और कहानी भी एक भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत कुछ कहती है, दिल की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करती है। इस फिल्म की अगर एक और बात कहें तो इस फिल्म में जो गुलजार साहब हैं उनको बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड्स में मिला पुरस्कार मिला, और सुबोध घोष को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसके सभी गीत जो हैं बाकी बहुत पसंद किए गए, और आशा भोसले की आवाज़ यूँ कहें कि इन गीतों में बहुत ही लाजवाब लगती है। वाकई उनकी आवाज़ तो वैसे भी बहुत ख़ास है, और इनको इस फिल्म में फिल्म के कारण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए। इस फिल्म की एक बात कहें तो यूँ कहें कि गुलजार की कविता, दूसरी तरफ पंचम दा का संगीत, और उस पर आशा भोसले की आवाज़, वाकई में कमाल कर लिया। ऐसा भाव रचा जो आज भी पुराना नहीं लगता, जब भी हम उनके गीत सुनते हैं तो वाकई झूम उठते हैं। और जो ये वाला जो गीत है मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और सबको बिल्कुल अपनी ज़ुबान पर उनकी होगा ही होगा ये गीत। तो सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

तो उस फिल्म का ये गीत इजाज़त फिल्म का वाकई बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाता है। ये ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने रिश्ते की अलमारी खोल दी हो और उसमें हम सब पुरानी जो यादें हैं उनको संजो रहे हो। तो आज की इस एक ही फिल्म से मैं बस इतना ही, और फिल्म की जो थी वो आज की फिल्म थी इजाज़त, गुलजार की कलम, पंचमदा का संगीत, आशा भोसले की आवाज़ और रेखा और नसरुद्दीन शाह की अदाकारी वाकई लाजवाब थी। और एक ऐसी कहानी थी जिसका आखिरी शब्द अलविदा नहीं बल्कि इजाज़त है। जी हाँ, रेखा और नसरुद्दीन शाह, जो कि अपनी यादें पुरानी संजोए रखती है रेखा, वो उससे इजाज़त लेती है कि अब हम दोनों खुशी खुशी अलग हो जाएं। और इसी तरह से ये फिल्म खत्म होती है और वाकई अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए, हम भी अब आपसे कहना चाहेंगे कि मैं भी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, परंतु जाइएगा कहीं ना, एक प्यारा सा गीत और आपके इंतज़ार में इसी फिल्म का यानी इजाज़त फिल्म का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
3: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 GW है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना शर्मा। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, एक ही कलाकार हम हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं, एक ऐसा कलाकार जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर की, यानी 60 के दशक की, 70 या फिर 80 के दशक की, तो हमारे दिमाग में ना एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के पोस्टर्स जो है ना वो आने लगते हैं। और कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो कहीं ना कहीं एक जहन में, एक दिमाग में ना एक छाप सी छोड़ जाती है। लव इन टोक्यो, जुगनू, ड्रीम गर्ल, आज़ाद और वॉरेंट, इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक ही बात कॉमन थी, वो था उसका निर्देशन। जी हाँ, उसका डायरेक्शन। इन सभी फिल्मों का डायरेक्शन जो था ना, वो बेहद बेहद कमाल था। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मा के, जी हाँ, हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के बेहद खूबसूरत एक फिल्म रही इनकी, ड्रीम गर्ल, किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

जी हाँ दोस्तों, ड्रीम गर्ल फिल्म से गीत रहा किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बात करें निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद चक्रवर्ती का जन्म 15 अगस्त 1929 को ढाका में हुआ। महज 17 से 20 वर्ष की आयु में आंखों में सिनेमा के सपने लिए मुंबई वो आ पहुंचे। शुरुआत में ना कोई जान पहचान थी और बिल्कुल अनजान शहर, वो भी बेहद भीड़ से भरा हुआ। छोटे मोटे काम कर कर दिन वो गुजारा करते थे, लेकिन सिनेमा के जो सपना था ना, जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का जो सपना था और जुनून था, उन्हें मरने नहीं दिया प्रमोद जी ने। उन्होंने मशहूर निर्देशक राज खोसला के साथ फिल्म मिलाप 1955 में आई ये फिल्म, और फिल्म सीआईडी जो कि 1956 में थी, इन फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्ट काम किया। और ऐसे ही जैसे हमने बात करी सीआईडी फिल्म की, तो आइए सीआईडी फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में सुनते हैं इस गीत।

जी हाँ दोस्तों, हमने बताया कि बतौर असिस्ट काम किया प्रमोद चक्रवर्ती ने इस फिल्म में राज खोसला के साथ, और सीआईडी फिल्म से गीत रहा शमशाद बेगम की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया ओपी नैयर ने। बेहद खूबसूरत गीत फिल्म सीआईडी से। और 1956 में बनी सीआईडी फिल्म के बाद आया साल 1958 का। जी हाँ, जब उन्होंने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर के साथ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 12 ओ क्लॉक में बतौर निर्देशन डेब्यू किया।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत रहा 1958 में बनी फिल्म 12 O'Clock से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बेहद खूबसूरत गीत और संगीत दिया इस गीत को ओपी नैयर ने। आप जुड़े हुए एक ही कलाकार से, और आज के कलाकार हैं निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, 1958 और की बात चलते हैं 1962 की तरफ। प्रमोद जी ने अपने प्रोडक्शन हाउस प्रमोद फिल्म्स की नींव रखी 1962 में। 1964 में आई उनकी फिल्म जिद्दी। जी हाँ, इस फिल्म में जॉय मुखर्जी ने काम किया। आशा भोसले के साथ उन्होंने बेहद एक ही सफल फिल्म दी और खूबसूरत उन्होंने निर्देशन दिया इस फिल्म में। लेकिन 1966 में जो फिल्म आई लव इन टोक्यो, उसने तो इतिहास ही रच दिया।

को दीवाना, ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज मशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सब

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना 1966 में बनी फिल्म जापान, जी हाँ लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगर निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन के कुछ खास बातों पर ध्यान दें तो विदेशों में जो शूटिंग है, जी हाँ वो पहले भारतीय निर्देशकों में से थे जिन्होंने विदेशों में जैसे कि जापान में व्यापक रूप से शूटिंग की, और हेलीकॉप्टर से उन्होंने बहुत सारे शॉट लेने का भी प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस की। और हर जोनर पर, जी हाँ हर एक फिल्म उन्होंने हर एक टाइप की फिल्म्स को बनाने का पूरा पूरा उनको श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा जैसे कि रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो तुमसे अच्छा कौन है, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की बात की जाए तो वो रही वॉरेंट, और सस्पेंस, जी हाँ पासपोर्ट फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, हर तरह का सिनेमा उन्होंने बनाया। और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के साथ तो उनकी काफ़ी ट्यूनिंग को पसंद किया जाता था, वो काफ़ी इनके साथ में कंफर्टेबल रहते थे। उनकी शानदार फिल्में रहीं जुगनू, नया ज़माना, ड्रीम गर्ल और आज़ाद, ऐसी सुपर डुपर फिल्में प्रमोद चक्रवर्ती जी ने हमें दी। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस फिल्म, जी हाँ जुगनू फिल्म से इस गीत को सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं एक ही कलाकार से और कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपने पसंद किया होगा। लेकिन अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन आपसे मिलूंगी मैं कुछ ही मिनटों में लेकर कार्यक्रम। जी हाँ, लेकर कार्यक्रम मिलेंगे हम मैटिनी मेलोडी से। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल और मुस्कुराते रहिए। पुरानी फिल्मों की जो गीत हैं उनका मजा लेते रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 2:59 और 40 सेकंड हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और ठीक 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज।

आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और लगभग आधे घंटे के इस कार्यक्रम में करेंगे 70 के दशक के कुछ गीतों की बातें और उस दशक में बनी कुछ फिल्मों के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपके साथ चेतना।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे हैं। जी हाँ, 1970 के दशक में बनी फिल्म उमराव जान से। कयाम ने इस फिल्म को जो है, इस गीत को जो है वो संगीत दिया और बेहद सफल फिल्मों में से रही ये फिल्म भी। बेल बॉटम्स पैंट्स, जी हाँ, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट्स से हमें याद आता है। जी हाँ, वो 1960 और 70 का दशक। बड़ा सा आंखों पे चश्मा और कानों में गूंजती हुई आरडी बर्मन की कुछ धुनें। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बिल्कुल उसी वाले दशक में पहुंच गए हैं। जैसे एक टाइम मशीन की घड़ी को पीछे घुमा दिया जाता है और हम लैंड हो गए 1970 के दशक में। वो दौर था जब भारतीय सिनेमा ने एक नई करवट ली। एक तरफ राजेश खन्ना का जादुई रोमांस था, तो दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन बनकर उभरे अमिताभ बच्चन।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1970 के दशक में बनी कुछ फिल्मों के बारे में। हम बात कर रहे थे दशक में कौन से हीरो थे जिन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस से लोगों के दिलों पर एक छाप सी छोड़ी। अगर बात की जाए 70 के दशक की वाकई में, तो राजेश खन्ना, जी हाँ, अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काफ़ी फिल्में इस दशक में देखने के लिए मिली। कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी फिल्मों ने देश के हर युवा को देखा जाए तो प्यार करना सिखाया, और राजेश खन्ना का सिर झुकाकर मुस्कुराने की जो अदा थी उस पर तो पूरा देश ही फिदा था।

दोस्तों, अभी आपने गीत सुना सलील चौधरी के संगीत में बना हुआ, और ये रही फिल्म आनंद मुकेश की आवाज़ में। 70 के दशक की अगर बात की जाए तो हम राहुल देव बर्मन को, यानी हमारे प्यारे पंचमदा को, हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आरडी बर्मन पंचमदा ने इस दशक में कोई नया तड़का ना डाला हो। इंडियन म्यूज़िक में वेस्टर्न रॉक हो, जैज़ हो या कैबरे म्यूज़िक का जो तड़का लगाया ना, वो 1970 से लगना शुरू हो गया था। और इन गीतों पर हर कोई झूमने के लिए जो ना बिल्कुल आमादा हो गया था कि भाई ऐसा संगीत था कि 1970 के दशक में हमें ऐसे गीत भी मिले।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मैटिनी मेलेडीज़ की गीतों के साथ। जी हाँ, गोल्डन ईरा की जो गीत थे उनसे हम जुड़े हुए हैं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 3:17 हो चुके हैं और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। एक तरफ 1970 के दशक में थी दम मारो दम, जी हाँ महबूबा ओ महबूबा जैसी धुनें ने एक तरफ इतना शोर मचा रखा था कि बस, लेकिन दूसरी तरफ तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, बहुत ही भावुक और शांत संगीत। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सभी आवाज़ों ने पंचम दा के गीत जो है ना उन्हें अमर कर दिया। चलिए सुनते हैं 70 के दशक में इस अगले गीत।

जी हाँ दोस्तों, 1970 का दशक। जी हाँ, ये रहा गोल्डन ईरा मैटिनी मेलोडीज का। 70 का दशक मल्टी स्टारर फिल्मों का था। अमर अकबर एंथनी की बात की जाए, शोले फिल्म या फिर यादों की बारात जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों में इतिहास रचा। टॉकीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी टिकट्स के लिए, ब्लैक में टिकटें खरीदी जाती थी, और रोमांस का दौर था वो, उसकी बात ही कुछ अलग थी। इस दशक के अंत तक बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भारत में डिस्को युग की भी शुरुआत हो चुकी थी। और दोस्तों, कहें कि 1970 का दशक जो था ना, वो रंगीन और मस्ती भरी यादों को तरोताजा करता है। नगमे बेहद खूबसूरत थे 70 के दशक में। जी हाँ, एक मिक्स सा, एक संगीत कहें कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें भावनाएं भी थी, जैज भी था, एक डिस्को भी था। हर एक तरीके का म्यूजिक संगीत हमें इस दशक में सुनने के लिए मिला।

महबूब की मेहंदी फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के 3:24 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं मैटिनी मेलोडीज़ के साथ में। और कार्यक्रम जो है ना वो अंतिम पड़ाव पे है, आपको छोड़े जा रही हूँ इस आखिरी गीत के साथ। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त दोपहर के 3:29 और पूरे 30 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में यानी 3:30 पर आप जुड़ेंगे उर्दू के कार्यक्रम उर्दू मजलिस से, जिसमें आज का स्पेशल प्रोग्राम रहेगा रक्षाबंधन पर। 4 बजे आप जुड़ेंगे समाचारों से और 4:10 तक आप समाचारों के साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल जो स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त है वो 3:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मोहब्बत और पाकीज़गी से भरपूर एक त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसको राखी का त्यौहार या सलोनु भी कहते हैं। ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मोहब्बत और इंसानियत का सबक देने वाला त्यौहार है। राखी सिर्फ धागा नहीं है, बल्कि धागों की ये वो मजबूत डोर है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्ते में मिठास पैदा करती है, मोहब्बत को फरोग देती है। यानी रंग बिरंगे धागों की ये मुकद्दस डोर अपनी मिसाल आप है। आइए सामीन मोहतरमा इशरत चौधरी से उनकी तकरीर सुनते हैं। मौजू है रक्षाबंधन, इंसानी रिश्तों की मजबूत डोर।
1: रिश्ते इंसान की जिंदगी की वो अनमोल दौलत हैं जिनकी कीमत किसी बाजार में नहीं लगाई जा सकती। मालो दौलत, शोहरत और ओहदा वक्त के साथ साथ बदल जाता है, मगर मोहब्बत, खुलूस और एतमाद से कायम होने वाले रिश्ते इंसान की ज़िंदगी को एक ऐसा सहारा देते हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ रिश्ते सिर्फ खून के रिश्तों तक महदूद नहीं हैं। यहाँ मोहब्बत ने अजनबियों को अपना बनाया है, इंसानियत ने दूरियों को मिटाया है और तहजीब ने मुख्तलिफ मजाहिब और तबकात के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है। इसी खूबसूरत जज्बे की एक मिसाल है रक्षाबंधन। राखी का एक छोटा सा धागा देखने में तो मामूली जरूर है, मगर इसके साथ जज्बात की एक पूरी दुनिया वाबस्ता है। इसमें बहन की मोहब्बत है, भाई के लिए उसकी दुआ है, भाई की तरफ से हिफाजत का अहद है और सबसे बढ़कर एक दूसरे को सुख दुख में शरीक रहने का एक जज्बा है। लेकिन अगर हम रक्षाबंधन को सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने की रस्म समझें तो शायद हम इस त्यौहार के असल मायने को बहुत महदूद कर देंगे। रक्षाबंधन दरअसल मोहब्बत, एतमाद, वफादारी, हिफाजत और बाहमी जिम्मेदारियों का त्यौहार है। अगर हम तारीख की सफहात पलटें तो पता चलता है कि हिंदुस्तान मुआशरे में हिफाजती धागा या मुकद्दस धागा बांधने की रिवायात बहुत पुरानी है। मुख्तलिफ मजहबी रस्मों और सामाजिक तहजीब में इस धागे को हिफाजत, दुआ और नेक तमन्नाओं की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यानी धागा हमारे यहाँ सिर्फ एक धागा नहीं रहा है, यह कभी दुआ बना है, कभी अहद बना है, कभी रिश्तों की निशानी बना है और कभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया। रक्षाबंधन से मुतालिक कई कदीम और आवामी दास्तान भी हिंदुस्तानी मुआशरे में मशहूर हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी रवायात हो या दूसरी आवामी दास्तान, इन तमाम कहानियों में एक बुनियादी जज्बा नजर आता है और वो है मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होना। हिंदुस्तानी तारीख से जुड़ा रानी कर्णावती और बादशाह हुमायूं का वाकया भी अक्सर रक्षाबंधन के हवाले से बयान किया जाता है। हालांकि इस वाकये की तारीख, हैसियत और इसकी कुछ तफसील के बारे में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफात पाया जाता है, लेकिन आवाम की याददाश्त में यह किस्सा भाईचारे और हिफाजत की अलामत के तौर पर जिंदा रहा है और यही हिंदुस्तानी तहजीब की दिलकशी है। यहाँ तारीफ सिर्फ किताबों में महफूज नहीं रहती, बल्कि लोक रवायतों, किस्सों और यादों के जरिए नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रहती है। आम तौर पर यह बहन और भाई के बीच का त्यौहार है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ खून के रिश्तों तक महदूद नहीं है। अपने सगे भाई बहन एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मनाते हैं, मगर जो लोग खून के रिश्तों से नहीं जुड़े होते लेकिन एक दूसरे को अपना भाई बहन मानते हैं, वो लोग भी इस राखी को मनाते हैं। यहाँ तक कि बहनें अपनी हिफाजत करने वाले कुछ अहम लोग जैसे कि फौजी, पुलिस और बुजुर्गों को भी अपनी हिफाजत और इज्जत की अलामत के तौर पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज से हुई है, लेकिन वक्त के साथ ये तहजीबी कल्चरल त्यौहार बन चुका है और किसी एक मजहब तक महदूद नहीं है। सिख और जैन बिरादरी में भी ये त्यौहार मोहब्बत, हिफाजत और रिश्तों की इज्जत के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और दूसरे मजहब के लोग अपनी मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहाँ एक ही त्यौहार मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाता है। रक्षाबंधन भी इससे मुस्तस्ना नहीं। राजस्थान में सिर्फ भाई को ही नहीं बल्कि भाभी की चूड़ियों पर भी राखी बांधी जाती है, जिसे लूम्बा राखी कहते हैं, जिसे बनाने का तरीका भी कुछ खास और अलग होता है। इसे एक लटकन की तरह डिजाइन किया जाता है। इसमें गोटा पट्टी का काम, रंग बिरंगे रेशम के धागे और मोती और शीशों का इस्तेमाल किया जाता है। मगरबी बंगाल, वहां पर रक्षाबंधन को झूलन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की राखी भी अपनी शानदार

0: और कारीगरी के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र के किनारा पट्टी इलाकों में इसे नराली पूर्णिमा कहते हैं, जहां समुन्द्र देवता की पूजा की जाती है। इसे बनाने के लिए नारियल के रेशों और ऊन से खास राखी बनाई जाती है। यूपी और बिहार में पूजा का पवित्र लाल पीला धागा और उसमें हल्दी चंदन लगाकर सबसे पाक और कल्चरल राखी तैयार की जाती है, जिसे मोली राखी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई की नज़रें उतारती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं और दुआएं दी जाती हैं, और भाई अपनी बहन को तोहफे पेश करते हैं। लेकिन इस रस्म के पीछे सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं होती, कई घरों में यह मायके की याद, भाई बहन की मोहब्बत और खानदानी रिश्तों की तजदीद का मौका होता है। भाई बहन जो शायद रोजमर्रा की मसरूफियत में एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, इस दिन फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगर हम अपनी बहनों की हिफाजत की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुश्किल के वक्त में अपनी बहन का साथ खड़ा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि बेटी को तालीम मिले, लड़की को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। इसी सिलसिले में भारत सरकार की कई पहलें तालीम, सेहत, हिफाजत, खुद मुख्तारी पर जोर देती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैगाम इसी सोच को मजबूत करता है कि बेटी को सिर्फ मजबूत महफूज रखना ही नहीं, बल्कि उसे पढ़ाना आगे बढ़ाना भी समाज की जिम्मेदारी है। अगर राखी का मतलब हिफाजत है, तो किसी बेटी को स्कूल तक पहुँचाना भी हिफाजत है। अगर राखी का मतलब मुस्तकबिल की फिक्र है, तो उसकी तालीम में मदद करना भी हिफाजत है। और अगर राखी का मतलब उसके चेहरे पर मुस्कान देखना है, तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी देने उसी जज्बे का हिस्सा है। इसी तरह राखी के दिन भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, लेकिन अगर उस तोहफे के साथ साथ उसके मुस्तकबिल की फिक्र भी जुड़ जाए, तो इस रिश्ते का मतलब और गहरा हो जाता है। किसी बहन को महज सहारा देना, बल्कि उसे इस काबिल बनाना कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, यही असल मजबूती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने करियर, तालीम, रोजगार और दूसरी जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ हैं कि कई बार एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते। भाई किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है, बहन किसी और शहर में तालीम या रोजगार के सिलसिले में रह रही है। ऐसे में राखी कभी कभी डाक के जरिए पहुंचती है, कभी कूरियर के जरिए और कभी वीडियो कॉल के जरिए। टेक्नोलॉजी के फासले तो कम कर दिए हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, दिल की गहराई से जिंदा रहते हैं। वीडियो कॉल चेहरे को करीब ला सकती है, मगर दिल की दूरी को सिर्फ मोहब्बत और खुलूस ही कम कर सकता है। इसीलिए रक्षाबंधन हमें सिर्फ राखी बांधने का नहीं, बल्कि रिश्तों की तजदीद का मौका देता है। रक्षाबंधन का पैगाम सिर्फ भाई बहन तक ही महदूद नहीं है, हमारी गंगा जमुना तहजीब में रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और इंसानियत पर रही है। हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते आ रहे हैं। ईद की सिवैयाँ हों या दिवाली की मिठाई, होली के रंग हों या रक्षाबंधन की राखी, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना हमारी साझी तहजीब का खूबसूरत पहलू रहा है। रक्षाबंधन इसी साझी तहजीब के हवाले से हमें ये पैगाम देता है कि इंसानी रिश्ते मजहबी सरहदों से बड़े होते हैं। मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती, एतमाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। इस रक्षाबंधन पर हम सिर्फ एक रस्म अदा ना करें, बल्कि अपने रिश्तों की तरफ दोबारा पलट कर देखें। जिनसे हम नाराज़ हैं उनसे बात करें, जिनसे दूर हैं उन्हें याद करें, जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके लिए वक्त निकालें, अपने भाई बहन के ख्वाबों को समझें, उनकी कामयाबी में अपनी खुशी तलाश करें और रिश्तों में मोहब्बत, खुलूस और एतमाद को जगा दें। क्योंकि राखी की असल ताकत उस धागे में नहीं, बल्कि उस जज्बे में है जो धागे को बांधने वाले दो दिलों में मौजूद होता है। हमें यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी में कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो जाए, रिश्तों की कदर कभी कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कलाई पर राखी ना बांधिए, मोहब्बत की डोर बांधिए, एतमाद की डोर बांधिए, एहतराम की डोर बांधिए और एक ऐसा अहद कीजिए कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, फासला चाहे कितना भी बढ़ जाए, मगर दिलों के दरमियान का ये रिश्ता कभी कमजोर ना पड़े।
1: सामीन, अभी आप मोहतरमा इशरत चौधरी से उनकी तकरीर सुन रहे थे। मौजू था रक्षाबंधन, इंसानी रिश्तों की मजबूत डोर।

रक्षाबंधन पर अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत नगमा। सामीन, रक्षाबंधन यानी राखी का ये खूबसूरत त्यौहार बरसात की यादों का एक तोहफा है और सावन की रिमझिम बारिशों के दिनों में ये त्यौहार आता है। हरियाली छाई होती है और दिल को लुभाने वाला हंसी समा होता है। दरअसल ये त्यौहार बहनों को अपने भाइयों के तई अपनी बेलौस मोहब्बत के इजहार का मौका फराहम करता है। यानी पुरकशिश रेशम के धागों से बनी राखी वो अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं और बदले में वो उनसे अपनी हिफाजत या रक्षा की ख्वाहिशमंद होती हैं। भाई भी नहायत खुशी और फख्र से बहनों से राखी बंधवाते हैं और उन्हें अपनी मोहब्बत और उनके तहफ्फुज़ का यकीन दिलाते हैं। बहन तिलक की थाली सजा कर लाती है, भाई के तिलक लगाती है, मुँह मीठा कराती है और भाई बहन को कोई तोहफा या रुपये देता है। रक्षाबंधन के हवाले से हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इससे कबल आइए शोभना राव की आवाज़ में सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल। कलाम है जिगर मुरादा।

इसकी महक बहुत अनोखी, निराली और दिलकश है। राखी के रंगीन कच्चे धागों में वो ताकत है जो हालात का रुख मोड़ सकते हैं, अमनो आश्ती का पैगाम दे सकते हैं। राखी का त्यौहार मुकद्दस रिश्तों के जज्बों के इजहार के अलावा सबके लिए खलुस व मोहब्बत का एक पैगाम है। इस मौके पर बहन भाई चाहे कितने भी दूर हों, फासले जगह के हों या दिलों के, राखी दूरियों को ख़त्म करके उन्हें करीब ले आती है और ये अटूट बंधन मोहब्बत का गहरा रंग चढ़ा देता है। और आइए अब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

सामीन, रक्षाबंधन हमारे मुल्क का एक अहम और खूबसूरत त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, खुशी और कामयाबी के लिए दुआ करती है। भाई भी अपनी बहन की हिफाजत और उसकी खुशियों का ख्याल रखने का वादा करता है। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि बहन भाई का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के सहारे का रिश्ता भी है। ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मसरूफियत क्यों ना हो, हमें अपने रिश्तों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए।

सामीन, रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि रक्षा यानि तहफ्फुज़ का दायरा महज हमारे घर की चार दीवारी तक महदूद न रहे, बल्कि हर औरत, हर बहन, हर बेटी की इज्जत और वक़ार की हिफाजत करना मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। जिस दिन यह जज्बा हर घर, हर गांव, हर शहर में जाग उठेगा, उस दिन हमारे समाज से सारी बुराई

सामीन, अभी आप रक्षाबंधन के हवाले से हमारा ये खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। तरतीब वो पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 4 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: 听阿萨姆邦的民间歌曲。
1: देखो अंधा सोखू मेरी

阿萨木邦夷、阿萨木邦察合、阿萨木邦西闻名，夜上动物旅药朱离阿萨木邦的经济。听众朋友们，继续收听。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल के मैदान पर हर पल बदलता समीकरण, कहीं जीत के लिए आखिरी मिनट तक जंग, तो कहीं फाइनल की ओर बढ़ते कदम, और कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती। नमस्कार, आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी और मैं हूं आपका साथी प्रतीक आनंद, और मेरे साथ हैं
2: मैं हूं आकाश। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले रुक करेंगे हॉकी विश्व कप 2026 का, जहां महिला वर्ग में भारत और जर्मनी के बीच पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले पर होगी हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबलों बेल्जियम बनाम नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा हाल जानेंगे।
1: इसके बाद पुरुष हॉकी में भारत और बेल्जियम के बीच सातवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले का प्रीव्यू, और पुरुष सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स बनाम स्पेन तथा अर्जेंटीना बनाम जर्मनी की भिड़ंत पर होगी खास चर्चा।
2: इसके अलावा सुब्रतो कप 2026, ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स, बुडापेस्ट ओपन स्क्वॉश, दिल्ली प्रीमियर लीग और खेल जगत की दूसरी अहम खबरें भी होंगी हमारे साथ।
1: तो खेल के हर मैदान की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हॉकी विश्व कप 2026 से, जहां महिला वर्ग में भारत और जर्मनी के बीच खेले गए पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले की रिपोर्ट लेकर मौजूद हैं आकाश।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारत ने कल यानी 27 अगस्त गुरुवार को नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में खेले गए पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में विश्व की पांचवी रैंकिंग वाली जर्मनी को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ विश्व की 9वीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में पांचवा स्थान हासिल किया। ये 1974 में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में चौथे स्थान पर रहने के बाद विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत की इस जीत में इशिका ने 43वें मिनट जबकि नवनीत कौर ने 44वें और 47वें मिनट में गोल किए। जर्मनी की ओर से लिन क्रिंक्स ने 59वें मिनट में एकमात्र गोल किया। मुकाबले की शुरुआत में दोनों टीमों ने सतर्क रवैया अपनाया। शुरुआती दौर में जर्मनी के पास गेंद पर अधिकांश नियंत्रण रहा, लेकिन भारतीय टीम ने धीरे धीरे अपनी लय हासिल की। 5वें मिनट में बलजीत कौर और साक्षी राणा ने दाहिने फ्लैंक से शानदार तालमेल दिखाया। दोनों ने गेंद को कप्तान सलीमा टेटे तक पहुंचाया, लेकिन जर्मनी के डिफेंस ने भारतीय कप्तान को गोल करने का मौका नहीं दिया। दोनों टीमों ने सर्कल में प्रवेश तो किया, लेकिन साफ सुथरे शॉट लगाने

0: में कामयाब नहीं हो सकी। 11वें मिनट में जर्मनी गोल के करीब पहुंचा, जब जोहाना हाचेनबर्ग ने रिवर्स हिट का प्रयास किया, लेकिन भारतीय डिफेंडर ने समय पर स्टिक लगाकर खतरा टाल दिया। 15वें मिनट में वीडियो रेफरल के बाद जर्मनी को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। बीचू देवी ने शुरुआती खतरे को शानदार ढंग से रोका। इसके बाद जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जर्मन खिलाड़ी आपसी तालमेल में चूक गए और गेंद खेल से बाहर चली गई। दूसरे क्वार्टर में भारत के पास बढ़त बनाने का अच्छा मौका आया। दीपिका ने नवनीत कौर को गेंद दी और नवनीत ने लाल रेमसियामी को सेट किया, लेकिन उनका प्रयास गोल पोस्ट के बाहर चला गया। इसके बाद जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंजेक्शन सही नहीं रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने खतरा टाल दिया। भारत ने इसके बाद लगातार हमले किए। नवनीत कौर और सलीमा टेंटे ने मिलकर जर्मन गोलकीपर फिंजा स्टार्क की परीक्षा ली। स्टार्क ने लगातार 3 शानदार बचाव करते हुए हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 बनाए रखा। गोल रहित पहले 30 मिनट के बाद तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपने खेल का स्तर ऊंचा किया और आक्रामक हॉकी का शानदार प्रदर्शन किया। 43वें मिनट में नेहा ने गेंद पर कब्जा हासिल किया और तुरंत इशिका को पास दिया। इशिका के पास दोनों तरफ विकल्प मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुद जर्मन डिफेंस को चुनौती देने का फैसला किया। उनका शानदार रन आखिरकार एक बेहतरीन फिनिश में बदला और भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत ने अगले ही मिनट अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। लगातार दबाव बनाने के बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। नवनीत कौर के पहले सीधे प्रयास को जर्मनी के रनर ने रोक दिया, जिसके बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार नवनीत ने शानदार ताकत के साथ गेंद को जर्मन डिफेंस के दायरे में भेजते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी। तीसरे क्वार्टर में मिली बढ़त के बाद भारत ने अंतिम क्वार्टर में भी अपनी आक्रामकता जारी रखी। 47वें मिनट में कप्तान सलीमा टेंटे ने बेसलाइन के पास नवनीत कौर को गेंद दी। नवनीत ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए दो जर्मन डिफेंडरों को छकाया और गेंद को गोल में डाल दिया। ये नवनीत का मैच में दूसरा गोल था और भारत ने मुकाबले में 3-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। जर्मनी ने वापसी की कोशिश जारी रखी। 50वें मिनट में लिन क्रिंक्स का डिफ्लेक्शन मामूली अंतर से गोल से बाहर चला गया। हालांकि 59वें मिनट में क्रिंक्स ने जर्मनी के लिए एक गोल जरूर किया और स्कोर 1-3 कर दिया, लेकिन भारतीय डिफेंडर ने अंतिम क्षणों में शानदार संयम बनाए रखा और जर्मनी को दोबारा मुकाबले में लौटने का मौका नहीं दिया। अंतिम सीटी के साथ भारत ने जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH महिला विश्व कप हॉकी 2026 में 5वां स्थान हासिल कर लिया। भारत की इस जीत पर भारत की गोलकीपर सविता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: खुशी भी थी और वो उसमें इमोशनल भी थे, क्योंकि आज बहुत अच्छी हॉकी खेली और सबको यही था कि काश ये हॉकी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली होती तो आज हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। बट हर चीज से सीखा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के बाद हमने यही सीखा कि हमें सिर्फ खुद पे फोकस रखना है। और तीनों गोल इतने क्लासिक गोल थे कि वर्ल्ड क्लास गोल थे और ये एक अच्छी फीलिंग के साथ हम नेक्स्ट टूर्नामेंट में जाना चाहते हैं कि एशियन गेम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि वहां डायरेक्ट हम ओलंपिक क्वालिफाई करने पे फोकस रखेंगे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने इस टूर्नामेंट में सीखा है कि खुद पे फोकस रखना है। ओपोनेंट को हम डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट है, बट मेन जो है हमें हमारी टीम पे फोकस रखना है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है उस पे हमें काम करना है। आज हर एक प्लेयर बहुत अच्छा खेला है, बट नवनीत ने जितने अच्छे गोल किए हैं तो वो बस यही था कि दीदी काश मैं उस दिन कर देती ऑस्ट्रेलिया वाले दिन। तो हमने यही बोला कि हर एक प्लेयर का कभी कभी दिन नहीं होता है। नवनीत हमेशा जब भी टीम को जरूरत रही है हमेशा नवनीत ने अच्छे स्कोर किए हैं, अच्छे पीसी बनाए हैं और नेशनल कप में आपने देखा और आज के मैच में देखा। तो बीइंग ए सीनियर यही था कि हमें इस चीज को गुड वे में लेके जाना और ये सेम कॉन्फिडेंस हमें एशियन गेम में काम आएगा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम की इस जीत पर कोच शोड मरीने ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: दिस मोमेंट नाउ इज टू एंजॉय व्हाट द गर्ल्स हैव अचीव्ड, दे हैव रिटन अ हिस्ट्री एंड विद अ यंग टीम, सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। बट या द नेक्स्ट थिंग इज ऑलरेडी वेटिंग एंड वी नीड टू रिकवर नाउ एंड टेक दिस गुड एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट टूर्नामेंट, टू द एशियन गेम्स। इट गिव्स अ बूस्ट इन कॉन्फिडेंस एंड आई कैन कीप टेलिंग प्लेयर्स लाइक वी कैन डू इट। I know we can, but at the end you have to experience it, and that's what we did now. Of course, I'm not going to share. I don't want to make the opponents better. But one thing, it will be all with 90% about ourselves and not about the opponents. What do we need to do well? And that's also how we approach every match, and also today. And you see what it can result, or what it can lead to. No, that's not one player. We are one team. I'm not going to name one player. But yeah, if you have 11 debutants, then it's a very. Yeah, you can guess yourself now. And I'm thinking now, like if I have to name one. Today, Twangi played her first match at the World Cup. That's not easy. That's very difficult, and I think she did today really well. And so compliments for her.
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में 6 मुकाबले खेले, जिसमें उसे

0: दो जीत, तीन ड्रॉ और एक हार मिली। भारत की एकमात्र हार मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हुई। इसके अलावा भारत ने विश्व रैंकिंग में उससे ऊपर की टीमों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ खेले। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। जर्मनी के खिलाफ 3-1 की जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने न केवल विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे अभियान का शानदार अंत भी किया।
1: जी हाँ, इसी के साथ नजर डालते हैं बाकी खेले गए सेमीफाइनल्स पर। कल महिला विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया और वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त दी। दोनों ही टीमें अब कल फाइनल में भिड़ती दिखेंगी। इसी के बाद अब नज़र डालते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर।
2: सबसे पहले बात करते हैं भारत और बेल्जियम के मुकाबले की। भारत और बेल्जियम के बीच 7वें-8वें स्थान का मुकाबला 28 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:45 पर बेल्जियम के बेल्फियस हॉकी अरीना में खेला जाएगा। यह मुकाबला टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अंतिम मैच होगा। भारतीय टीम ने विश्व कप की शुरुआत पूल डी में की थी। पहले मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। इसके बाद इंग्लैंड से भारत को 2-4 की हार मिली, लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत ने अगले चरण में जगह बनाई। दूसरे चरण में भारत का सामना नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना से हुआ। भारत को नीदरलैंड से 1-3 और अर्जेंटीना से 3-5 की हार मिली। अर्जेंटीना के खिलाफ भारत ने मुकाबले के शुरुआती हिस्से में संघर्ष किया, लेकिन अर्जेंटीना की आक्रमण के सामने भारतीय डिफेंस दबाव में आ गया। इस हार के बाद भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया और अब 7वें स्थान के लिए खेलेगा। भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा 6 गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप का 3 बार पदक विजेता रहा है। भारत ने 1971 में कांस्य, 1973 में रजत और 1975 में स्वर्ण पदक जीता था। 1975 का विश्व कप भारत का एकमात्र विश्व कप खिताब है। 1975 के बाद भारत विश्व कप में पोडियम पर वापस नहीं आ सका। भारत ने 2025 में एशिया कप जीतकर 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था। दूसरी ओर बेल्जियम ने पहली बार 2018 में भुवनेश्वर में विश्व कप जीता था। उस फाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को शूटआउट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। 2026 उसका 8वां पुरुष हॉकी विश्व कप अभियान है। बेल्जियम की शुरुआत भी मजबूत रही। पूल बी में बेल्जियम ने फ्रांस को 3-2 और मलेशिया को 5-3 से हराया, जबकि जर्मनी के खिलाफ उसे 1-0 से हार मिली। दूसरे चरण में बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से 1-1 से ड्रॉ खेल सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। विश्व कप से ठीक पहले बेल्जियम ने 2025-26 FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब भी जीता था। उसने 16 में से 13 मैच जीते थे। इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बेल्जियम की मजबूत रक्षा पंक्ति और पेनल्टी कॉर्नर को रोकना होगा। वहीं भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और मिडफील्ड में हार्दिक सिंह जैसे खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दोनों टीमों के लिए यह विश्व कप का आखिरी मुकाबला है, इसलिए बिना किसी अगले मैच के दबाव के आक्रामक हॉकी देखने को मिल सकती है। बात करें भारत बनाम बेल्जियम की टक्कर की, तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हराया था। 2024-25 प्रो लीग में भारत ने बेल्जियम को 4-3 से हराया था। आंकड़े दर्शाते हैं कि मुकाबला रोमांच से भरा रहेगा। अब बात करते हैं पुरुष विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल्स की। पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 28 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से नीदरलैंड्स के वैगनर हॉकी स्टेडियम एम्स्टलवीन में खेला जाएगा। मेजबान और 3 बार की विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स ने पूल ए में शानदार शुरुआत की थी। उसने न्यूजीलैंड को 5-1 और अर्जेंटीना को 3-1 से हराने के बाद जापान को भी 4-1 से हराया। दूसरे चरण में भारत को 3-1 से हराया और इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस तरह नीदरलैंड्स ने दूसरे चरण की पूल ई में 7 अंक हासिल किए और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। 2026 में नीदरलैंड्स का लक्ष्य लगभग 28 साल बाद फिर से विश्व कप ट्रॉफी जीतने का होगा। नीदरलैंड्स के खिताब साल 1973, 1990 और 1998 में आए थे। इसी के साथ उसे घरेलू मैदान और दर्शकों का फायदा भी मिलेगा। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक प्रतियोगिता में काफी आक्रामक खेल दिखाया है। वहीं बात करें स्पेन की तो स्पेन ने पूल सी में दक्षिण

अफ्रीका और आयरलैंड को हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे 1-0 की हार मिली। दूसरे चरण में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराया और बेल्जियम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। दूसरे चरण में स्पेन 4 अंकों के साथ पूल एफ में दूसरे स्थान पर रहा और सेमीफाइनल में पहुंचा। स्पेन ने पुरुष विश्व कप में इससे पहले 2 बार रजत पदक जीते हैं। उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1978 और 1998 में आया था, जब वह फाइनल तक पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत सके। इसलिए 2026 में फाइनल में पहुंचना स्पेन को फिर से विश्व कप खिताब के बेहद करीब ले जाएगा। स्पेन ने टूर्नामेंट में मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया है। यह मुकाबला गेंद पर नियंत्रण, पेनल्टी कॉर्नर और गोल के मौकों को भुनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की, जहां जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला 29 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से बेल्जियम के बेल्फियस हॉकी अरीना में खेला जाएगा। जर्मनी साल 2002, 2006 और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीत चुका है, साथ ही साथ वर्तमान में डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन भी है। जर्मनी ने पूल बी में मलेशिया को 5-1 और बेल्जियम को 1-0 से हरा के फ्रांस के 1-1 का परिणाम हासिल किया। दूसरे चरण में स्पेन से मिली 2-1 की हार के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। इस प्रदर्शन ने उसे सेमीफाइनल तक पहुंचाया। 2023 में भारत में हुए पिछले विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता था, इसलिए 2026 में सेमीफाइनल तक पहुंचकर जर्मनी लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जर्मनी के पास अनुशासित रक्षा पंक्ति और तेज बदलाव की है। और अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना ने पूल ए में जापान को 3-0 और न्यूजीलैंड को 7-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड्स से उसे 3-1 से हार मिली। दूसरे चरण में इंग्लैंड को 3-1 और भारत को 5-3 से हराकर उसने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के खिलाफ मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस डोमेने ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम की आक्रामक ताकत का परिचय

की एक पंक्तियां हैं, आओ बैठो तुम्हें सुनाऊं एक खास रिश्ते के अफसाने बताऊं। है एक नाजुक सी डोर से बंधा मगर रिश्ता पूरा पक्का है, है अटपटा या चटपटा जाने वो स्वाद जिसने इसे चखा है। खूब धुलाई मार पिटाई थोड़ी मोहब्बत ज्यादा लड़ाई, दिन भर करते एक दूजे परवार दिल में रखकर खूब प्यार। फिर न जाने क्यों एक दूजे को इतना सताते हैं और फिर नोक झोंक दिन भर की रोज सिराने रखकर सो जाते हैं। इस रिश्ते के उतार चढ़ाव लहरों से भी ज्यादा हैं, फिर भी एक डोर ने इसको मंजिल तक बांधा है। दुनिया से एक दूजे को महफूज रखते हैं पर टांग खींचने को जेबों में भरकर किस्से जरूर रखते हैं। लफ्ज भर नहीं सुनते बाहर खिलाफ और घर में एक दूजे की पोल खोलते हैं। धोखा फरेब ये कैसी बातें हैं, रिश्ते ऐसे प्यार के कभी ना टूटते हैं। कभी वार है कभी प्यार है, समझ में आता नहीं शायद यही स्नेह का आकार है, दिल से जाता नहीं यही स्नेह का आकार है। ये तो है हमारे परिवारों का असली रूप। परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, परिवार वह जड़ है जिससे हम अपनी पहचान पाते हैं, अपने संस्कार पाते हैं। आज के इस दौर में जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जब भाई बहन अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में जाकर बस गए हैं, तब रक्षाबंधन जैसे त्योहार ही हमें याद दिलाते हैं कि दूरियां चाहे कितनी भी हों, रिश्तों की डोर कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को ससुराल विदा करते वक्त जो आशीर्वाद देती है, एक पिता अपने बेटे को जो सीख देता है कि बहन की इज्जत अपनी जान से बढ़कर रखना, यही वो संस्कार हैं, यही वो विरासत है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। अब अगर हम बात करें पौराणिक समय की और विचार करें कि रक्षाबंधन का ये परंपरा जो है वो शुरू कहाँ से हुई, तो यदि पुराणों की बात करें तो यह कहानी सबसे पुरानी है। जब राजा बलि को पहली बार राखी बांधी थी माता लक्ष्मी ने, हुआ क्या था, भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक बचाने के लिए कि इंद्र लोक राजा बलि छीन ना ले, वामन अवतार धरकर राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि ने तभी 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे किए थे। वामन अवतार बने भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग धरती मांगी थी, जबकि राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य ने बता दिया था कि ये सामने वामन अवतार जिसे तुम बोना ब्राह्मण समझ रहे हो, ये और कोई नहीं, ये तो जगदीश्वर स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन राजा बलि ने संकल्प ले लिया था तो उन्होंने मना किया कि अब जब भगवान विष्णु ने यानी वामन अवतार ने मुझसे भिक्षा में 3 पग धरती मांगी है तो मैं उन्हें इनकार नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने पहले ही पग में पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग और पूरे आकाश को माप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर धारण करें। और प्रभु ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा बलि पाताल लोक को चले गए। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की कर्तव्य परायणता थी या जो संकल्प लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, उससे वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और खुद बन बैठे पाताल लोक के द्वारपाल। अब जब माता लक्ष्मी को पता चला कि प्रभु तो बैकुंठ लौटे ही नहीं, तो उन्हें वापस बैकुंठ लौटा लाने के लिए माता

लक्ष्मी एक गरीब नारी का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई, उन्हें राखी बांधी और उनसे बदले में अपना पति वापस मांग लिया। ऐसे ही यदि हम बात करें भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा की, ये तो सबको ही पता है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चलाया। सुदर्शन चलाते हुए उनकी उंगली पर थोड़ी चोट लगी और द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी का पल्लू फाड़कर उन्हें वो रक्षा सूत्र बांधा और भगवान ने भी उस रक्षा सूत्र की मर्यादा का पालन करते हुए दुशासन के दरबार में द्रौपदी की लाज की रक्षा की। ऐसे ही हम बात करें आज के युग की, तो अभी हम ज्यादा समय दूर भी नहीं है जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी सुल्तान बहादुर से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, जबकि मुगल शासक हुमायूं को मेवाड़ तक पहुंचने में थोड़ी देर हो चुकी थी। कर्णावती जो थी वो जोहर दिखा चुकी थी, लेकिन फिर भी हुमायूं ने उस रक्षा सूत्र का, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए धर्म और जाति से ऊपर उठकर, ये ना सोचते हुए कि मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू रानी थी, अपनी वो जो भाई वाला जो रिश्ता था उसे निभाया और मुगल शाह बहादुर को हराया और रानी कर्णावती के अल्प व्यसक पुत्र को वहां का शासक बनाया। इस तरह की कहानियां कहते ही जाएंगे तो कहानियां खत्म ही नहीं होंगी जब लोगों ने इस रक्षा सूत्र का पालन किया। पर मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो रक्षाबंधन के दायरे को परिवार की चार दीवारी से बाहर निकालकर पूरे समाज तक ले जाती है। हमारे देश की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, दिन रात हमारी रक्षा करने वाले हमारे सैनिक भाई, क्या वे केवल किसी एक बहन के भाई हैं? नहीं, वे तो पूरे देश की बेटियों के भाई हैं। हर साल रक्षाबंधन पर देखिए कितनी ही बहनें जिनका सैनिकों से कोई खून का रिश्ता नहीं होता उन्हें राखी भेजती हैं, चिट्ठियां लिखती हैं ये कहते हुए कि भैया आप सीमा पर हमारी रक्षा करते हो, हम यहाँ से आपके लिए दुआ करते हैं। यह जो भावना है यही तो असली भारतीयता है, जहाँ रिश्ते खून से नहीं स्नेह से बनते हैं। और यह जो भाव है यह हमारे गाँव की मिट्टी से निकला है। आज भी हमारे गाँव में यह परंपरा जीवित है कि गाँव का हर पुरुष गाँव की हर बेटी को अपनी बहन मानता है। कोई अजनबी अगर गांव की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो पूरा गांव उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। यह हमें कोई कानून नहीं सिखाता, यह संस्कार तो माँ की गोद से मिलता है, यही हमारी मिट्टी में रचा बसा है। इसीलिए तो बहनें भेजती हैं सैनिकों को राखियाँ। माथे पर तिलक नहीं पर भारत माँ का आशीष साथ है, सैनिक के हौसलों के आगे किसी भी संकट की क्या औकात है। ए सैनिक तुम हो तो हम महफूज हैं, तुम हो तो हर त्योहार है, हे देश के रक्षक तुम पर पूरे भारत का प्यार है। इसी तरह रक्षाबंधन और जब हम ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर तो हर रिश्ता गांव का नाती, यानी कौन कि गांव के रिश्ते से ये मेरी बहन लगती है, गांव के रिश्ते से ये मेरा काका है, गांव के रिश्ते से ये मेरी बुआ है, और लोग उस रिश्ते का बहुत अच्छे से पालन भी करते हैं। गांव की संस्कृति की हम एक और विशेषता की बात करें तो पर्यावरण की, गांव के लोग प्रकृति से भी एक भाई बहन जैसा एक रक्षा का सूत्र बांधते हैं। आपको यदि ध्यान होगा तो गांव के लोग रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को, नीम को, बरगद को, पीपल को, तुलसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं। बात वही है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण और प्रकृति हमारी रक्षा करे। और तो और किसान संस्कृति की बात करें तो किसान तो अपने घर में रहने वाले पशु तक को, बैल को, गाय को, इनको भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि किसान इस बात को अच्छे से जानता है कि यदि किसान किसानी कर पा रहा है तो उसमें उसके पशु धन का बहुत अधिक महत्व है। तो ये तो थी किसान की संस्कृति की बात। और जहां हम बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों के लिए भी यह दिन बहुत विशेष है, क्योंकि ब्राह्मण इस दिन अपने पुराने यज्ञोपवीत उतार कर नए यज्ञोपवीत धारण करता है, और इसीलिए तो इतना खूबसूरत सा त्योहार बन जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है, रक्षा का दायरा सिर्फ अपने घर की चार दीवारी तक मत सीमित रखो। हर स्त्री, हर बेटी, हर बहन के सम्मान की रक्षा करना हर पुरुष का, हर समाज का कर्तव्य है। जिस दिन यह भावना हर घर, हर गांव, हर शहर में जाग उठेगी, उस दिन हमारे समाज से सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब समय के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदला है और यह बदलाव बहुत सुंदर भी है। आज बहनें सिर्फ भाइयों को राखी नहीं बांधती, आज बेटियां अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी सहेलियों को भी राखी बांधती देखी जाती हैं, ये कहते हुए कि तुम भी मेरी रक्षक हो, तुम भी मेरी सखी हो। यह जो विस्तार है यह दिखाता है कि रक्षा और स्नेह का यह बंधन किसी एक परिभाषा में बंधा नहीं है, यह हर उस रिश्ते में जी सकता है जहां अपनापन हो, विश्वास हो।
आज की बेटियां भी अब सिर्फ राखी बांधने वाली नहीं बल्कि खुद रक्षक बनकर

0: उभर रही हैं, चाहे वे सीमा पर तैनात हमारी बेटियां हों, चाहे पुलिस में हों, चाहे प्रशासन में हों। यह समय आ ही गया है कि हम रक्षाबंधन को केवल भाई बहन की रक्षा करें इस विचार तक सीमित न रखें, बल्कि यह समझें कि रक्षा एक दूसरे के लिए एक दूसरे का कर्तव्य है, चाहे भाई हो या बहन हो। आज जब मैं ये सब कह रही हूँ तो मेरे मन में बस एक ही भाव है कि यह त्योहार हमें बांधे रखे, तोड़े नहीं। यह हमें सिखाए कि रिश्ते निभाना कोई मजबूरी नहीं, रिश्ते निभाना ही परिवार का सच्चा सुख है। बचपन के वो दिन, वह माँ के हाथों की मिठाई, भाई बहन की नोकझोंक, वह गांव की गलियों में गूंजती हंसी, यह सब हमारी वह पूंजी है जिसे हमें संभाल कर रखना है, अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना है। ये रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं, रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं, और भावना जब सच्ची हो तो वही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है।
1: भाई अभी हम सुन रहे थे ये वार्ता, रक्षाबंधन परिवार, सामाजिक एकता और ग्रामीण संस्कार और उसका महत्व। बहुत ही खूबसूरत जज्बात है और बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया।
2: ये जानकारी दे रही थी ज्योति चौधरी, जो करनाल की एक शिक्षिका हैं। और बहनों भाइयों, अब आपका फिर से एक बार मनोरंजन करवाते हैं और ले चलते हैं, सुनवाते हैं आपको कृष्ण भजन।

0: वायु कलाकार जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में सुना हमने ये कृष्ण भजन, और इसी के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाइयों को राम
1: राम, राम,
0: राम।
1: प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804-747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।

0: जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों की वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: विनेश बहन, आज रक्षाबंधन है और हमारे ऐसे तो पूरे देश में लेकिन गांवों में इसका खास उमंग है, इसलिए कि रक्षा के जो सूत्र हैं, रक्षा की जो संवेदनाएं हैं, गांवों में कुछ ज़्यादा ही प्रसरित हो जाती हैं। एक एक चीज़ से किसान को अपने खेत खलियानों से, यंत्रों से, अपने पशुपालकों को जो है कि पशुओं से, और घर के हर सदस्य को जो उनका रिश्ता है ना, वो एकदम से कह लीजिए कि अति आत्मीयता का हो जाता है। और आज के दिन वो देखने को मिलता है, वो महसूस किया जाता है।
1: त्योहारों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंजॉय भी करते हैं लोग, मज़े भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का भी खूब मज़ा लेते हैं। लेकिन हमारे प्यारे भाइयों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम के बदलाव को भी ध्यान रखना है। त्योहारों के साथ साथ आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि प्रकृति ने वैसे तो हमें बहुत कुछ खाने के लिए दिया है। फल, सब्जियाँ, नए नए तरीके के व्यंजन बनाते हैं हम उनसे, तो आप वो बनाएं जो कि आपके लिए हेल्दी हो।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि त्योहारों पे व्यंजन बनाना तो भारतीय संस्कृति का अटूट अभिन्न हिस्सा है, और इसमें कई तरह के व्यंजन बनते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से, नॉर्थ में जाएंगे वहाँ के हिसाब से, आप जो है कि राजस्थानी कल्चर में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ की पकवानों में वो दूध दही और बिल्कुल शुद्ध देसी घी जो होती है ना उसका, और आप इसी तरीके से जो है कि पूरब में चले जाएं तो वहाँ मिठास और कई चीज़ें होती हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और खान पान जो है इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, लेकिन खान पान का सीधा जुड़ाव जो है वो स्वाद से होते हुए सेहत से जाता है, जाके मिलता है। तो ज़रूरी ये है कि हम जो भी खाते हैं शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, बेहतर है कि ताज़ा खाएं, और फल सब्जियां जो हैं वो हमारे यहाँ प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दी हैं, हर सीज़न के लिहाज से, हर मौसम के लिहाज से, हर ज़रूरत के लिहाज से, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारे जो अन्न और फल हैं वो कई बीमारियों के लिए औषधि हैं।
1: बिल्कुल, हमें अपने रोज़ के खाने में फल, सब्ज़ी और ये सब भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। मतलब जो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के अनुकूल हो वो हम लें, और मौसम के अनुकूल हो तो त्यौहार के साथ, मौसम के साथ अपनी सेहत का

0: ध्यान रखें, वो खाएं जो आपको विटामिन दे, जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे और प्रोटीन दे, जो आपको इस मौसम में जो कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाने की भी आपको ताकत मिले, उन
1: वीनस बेन,
0: सब्जियों
1: आपने
0: से।
1: बिल्कुल सही कहा, आपने बीमारियों की बात की। तो दरअसल बीमारी होती कैसे है, जब भी कोई खाद्य है, जो भी कुदरत ने दिया है, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम प्रसंस्कृत करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ घंटे के बाद, दूध वाली चीज़ें हैं, दही वाले में जो है कि घी वाली चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट की है, जितने भी तरह के खाद्य हैं, कुछ घंटों के बाद उनमें फर्मेंटेशन शुरू होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये पैदा होने लगते हैं, और वही एक लेवल तक जाने के बाद रोग पैदा करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ताज़े फल हों, सब्जियां हों, और चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हों, ताज़े खाएं।
0: खास करके मोटा अनाज तो बहुत कोशिश करें कि अपने रोज के खाने में
1: भाई
0: ना हो।
1: मोटा अनाज
0: आजकल
1: तो
0: में तो काले से वंचित बन रहे
1: आज
0: हैं
1: के
0: शायद
1: नहीं,
0: भाई।
1: मिलेट्स को तो आज के दौर में हम यूं कह सकते हैं कि खाद्य का अमृत है।
0: अरे बहुत सारी व्यंजन है जो कि अभी मोटे अनाज से मिलेट से बनाई जा रही है। अब मजे से बनाएं और खूब खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं।
1: बिल्कुल खिलाएं, लेकिन अभी क्या काम करते हैं कि हम अपने बहनों भाइयों को एक अच्छा सा लोकगीत सुनाते हैं, क्योंकि मनोरंजन का उनको रहता है बड़ा इंतजार।

0: आजम भगत सिंह के बारे में, अपने रिश्तों का, एक भाई के तौर पे, एक बहन के तौर पे, कि वो शहीद हुए तो कैसे हम राखी बांधेंगे, देश कहाँ होगा, कैसे होगा, ये बहुत सारी बहुत तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं अनुराधा शर्मा और सुंदर ने बड़ी सुंदर आवाज़ में। इसी के साथ विनेश बहन याद आता है कि भगत सिंह जब बचपन में थे और अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लकड़ियाँ कुछ पत्ते जो है कि चुन चुन के खेतों में गा रहे थे, और वो उनका जो है कि गोदना उसमें जो है कि मिट्टी में लगाना, काका ने पूछा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। ये उस वक्त क्रांति, एक बचपन में एक मासूम मन में देश की आज़ादी के लिए ये देशभक्ति का जज्बा था, और वो जज्बा जो है कि आज भी किसी न किसी रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है होगी कि कृषि यंत्रीकरण उप विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है।
0: बिल्कुल, ये भी एक क्रांति है, और आज के दौर में यंत्रीकरण, वहाँ पे बंदूकों की क्रांति थी, बंदूकें बो रहे थे, और आज जो है कि कृषि की क्रांति हो रही है, और इसमें कृषि यंत्रीकरण जो है ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये दरअसल केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हमारे किसान भाइयों बहनों को मैकेनाइजेशन के लिए, वो कृषि यंत्र हैं कई तरह के, छोटे बड़े ना, कुछ जो है कि उन्नत तकनीक वाले हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, कई तरह की मदद देती है, ऋण और सब्सिडी देती है, जिससे कि हमारी जो पारंपरिक खेती है वो और उन्नत बन सके और मैकेनाइज हो सके, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किसानों की आय, हमारी जो है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ रही है।
1: बिल्कुल, इसका उद्देश्य तो यही है कि किसी भी तरह से जो टेक्नोलॉजी है हमारे कृषि क्षेत्र में अगर आती है तो लोगों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक प्रशिक्षण मिले, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कृषि से जुड़ी, इससे आगे हमारे एक कृषि लेवल का जो जो स्तर है जो वो एक ऊपर हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: और
0: हो रहा है, ये
1: होता जा रहा है।
0: ये जो सरकार की मंशा है, ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, और इस योजना से भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है हमारे किसान भाइयों बहनों को, और
1: इससे हमारे कृषि कार्य में जो समय की भी बचत होगी और अधिक मतलब लागत भी मिलेगी इस चीज से।
0: हाँ, वो हो रहा है, और एक काम करते हैं कि अब फिर से अपने बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और ले चलते हैं, उनको सुनवाते हैं ये रागी।

0: भाइयों, अभी आप सुन रहे थे उद्दल की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था हीर रांझा का।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं धर्मराज की सजा मिलेगी, ये उपदेश जोगिंदर सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश जोगेंद्र सिंह नागर की आवाज़ में। तो बहनों भाइयों, हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी शाहिद और वीनस को दीजिए इजाज़त। आपको राम राम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने खूबसूरत गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनधन योजना ने न केवल बैंकिंग की सुविधा दी बल्कि गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश की प्रगति में उनका भी समान अधिकार और समान स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस पहल उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक भारी मात्रा में प्याज पहुंचाने के लिए प्रभावी लॉजिस्टिक उपाय है। सड़क परिवहन के माध्यम से अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अमृतसर तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में 307 लाख टन से अधिक के अनुमानित उत्पादन के कारण आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है। जनता के लिए कल से मोबाइल वैन और NCCF और NAFED यानी नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ सफल और केंद्रीय भंडारों के माध्यम से 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने की पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित

0: चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। इन्हें नेपाल से बचाया गया है। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने कहा कि नेपाली सेना और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने भारत में उनकी सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। डॉ जयशंकर ने आज सवेरे नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि ये पर्व लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का पर्व बताया। उन्होंने कामना की कि पवित्र बंधन सभी के घरों में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई बहन का प्रेम सदैव अटूट बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों से रक्षाबंधन पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रेम के ऐसे बंधन का प्रतीक है जिसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों के साथ भी साझा किया जा सकता है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पेड़ों को राखी बांधने का आग्रह किया। इस विशेष समारोह में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 17 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 13 दिव्यांग बच्चे शामिल थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा नामक एक विशेष सड़क सुरक्षा यातायात अनुशासन अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन के अनूठे संयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और संरक्षण के वादे का संदेश दिया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष राखियों का कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, परिधानों, फैशन, गिफ्ट्स पैक, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अन्य उपहारों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी इस वर्ष रक्षाबंधन पर व्यापक समर्थन मिला। देश भर में उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। हस्तनिर्मित राखियों, पारंपरिक उपहारों, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा महिला स्व सहायता समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते थे। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजना शामिल था। इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट्स व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और भारतीयों से संपर्क करने के लिए करते थे। इस नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड खरीदने में सहायता के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान में इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे। कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया है कि यह केंद्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुले रहेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे संचालित होंगे। इन केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र मनोरंजन केंद्र को एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन केंद्रों में योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इनमें मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने, परीक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित व्यापक सुधारों की जाँच और सिफारिश करने के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जसपाल कौर।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन को हस खास स्थित NCUI ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागरिकों को सौंपे जाएंगे। मीडिया से बातचीत में दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने लोगों से आग्रह किया है कि फोन खोने पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
4: जिला दिल्ली पुलिस ने करीब 300 मोबाइल फोन आज उनके राइटफुल ओनर्स को जो खोए हुए थे अलग अलग जगहों से वापस ला करके सौंपे हैं। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मोबाइल फोन खोया जाए उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको वापस ढूंढा जाए और दिल्ली पुलिस निरंतर इस पे लगी हुई है। जल्द ही हम इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में और भी लोगों को वापस करें।
0: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25

0: 27 डिग्री सेल्सियस की आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को, पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। गीत मालिका में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देता हूं। रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए और आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दे और भारत को, तमाम बहनें जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें, ये भी सबकी कामना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो रक्षाबंधन विशेष पर्व पर लिया गया है, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील जोशी।
1: नमस्कार। श्रावण पूर्णिमा के इस परम पावन मंगलमय एवं सांस्कृतिक महापर्व पर मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के इस विशेष विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत केवल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की सुदृढ़ आधारशिला है। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, गणित, खगोल, व्याकरण, नाट्यशास्त्र तथा असंख्य ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत संस्कृत में ही निहित हैं। आज जब विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और सतत विकास के भारतीय दृष्टिकोण की ओर आकर्षित हो रहा है, तब संस्कृत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य उपस्थित हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, जो शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा संस्कृत के संवर्धन के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता एवं विशिष्ट योगदान के लिए सुख्यात हैं। माननीय कुलगुरु जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत दिवस मात्र एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का भी उत्सव है। आपके विचार से संस्कृत दिवस मनाने के पीछे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या हम कहें जो राष्ट्रीय महत्व है, उसको हम जानना चाहेंगे।
2: सर्वप्रथम संस्कृत दिवस की समस्त भारतवासियों को मंगल कामनाएं। संस्कृत दिवस समग्र देश में बहुत ही उत्साह के साथ अभी भी संस्कृत के पढ़ने लिखने वाले लोग, संस्कृतानुरागीगण मनाते हैं। भारत में काल का बड़ा महत्व है और हमारे भारतीय जो कालगणना है उस हिसाब से जो हमारे 12 मास हैं, उनमें से श्रावण का जो मास है वह अत्यंत पवित्र मास है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसी क्रम में श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है उसमें समस्त भारतवासी उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्कृत दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य जो संदेश है वह यह है कि हम इस तिथि को सभी संस्कृतानुरागी, हम ऋषियों का पूजन करते हैं। पूजन के माध्यम से उन ऋषियों के योगदान का, उनके संदेश का, उनकी ज्ञान परंपरा का स्मरण करते हैं और हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं सभी भारतवासी। संस्कृत इस देश की प्राणभूत भाषा है। यदि हमारा देश बोलता है तो उसकी जो वाणी है वह संस्कृत है और वह संस्कृत है तो वेद है, संस्कृत है तो उपनिषद हैं, संस्कृत है तो स्मृति है, संस्कृत है तो रामायण है, संस्कृत है तो महाभारत है, अर्थात इन सभी धर्म ग्रंथों की, इन सभी शास्त्रों की भाषा संस्कृत है। तो हम इस तिथि को, यह जो कार्यक्रम करते हैं, वह नई युवा पीढ़ी को यह संदेश देने के लिए कि हमें संस्कृत केवल स्मरण के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत हमारे भारत की संवाहिका है, संस्कृत हमारे संस्कार की संवाहिका है, संस्कृत हमारे भारतीय ज्ञान

0: विज्ञान की संवाहिका है, संस्कृत योग की संवाहिका है, संस्कृत आयुर्वेद की संवाहिका है, संस्कृत हमारे सदाचरण की संवाहिका है, और यदि संस्कृत है तो भारत है। मेरी दृष्टि में संस्कृत और भारत ये दो नाम नहीं है, संस्कृत ही भारत है और भारत ही संस्कृत है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। कालिदास के बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायण के बिना हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
1: जी निश्चित रूप से संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज का यह जो युग है वो विज्ञान का है, प्रौद्योगिकी का है, बल्कि वैश्वीकरण का यह युग है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि संस्कृत की जो समकालीन प्रासंगिकता है वह क्या है। आपके विचार से वर्तमान भारत और वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा किन किन क्षेत्रों में नई संभावनाओं के साथ उभर सकती है?
0: सुनील जी, बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की है कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। हमारा समग्र जो दर्शन का साहित्य है वह समग्र विज्ञानमय है। अगर मैं एक संकेत के रूप में न्याय दर्शन की बात करूं तो न्याय दर्शन में सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों को बोधन कराते हैं कि 16 पदार्थ होते हैं, और हम वैशेषिक दर्शन के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। वो 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ऐसे ही हम वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। कल्पना कीजिए कि संस्कृत के इन ग्रंथों में कितनी बड़ी ज्ञान और विज्ञान की संपदा निहित है। भारत का बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, चाहे हम योग के क्षेत्र में देखें, तो यह सारा ज्ञान विज्ञान पहले से ही संस्कृत में निहित है। तो यह अतीत में हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वर्तमान में भी अत्यंत प्रासंगिक है और इसका अत्यंत उत्तम भविष्य भी है। संस्कृत आज AI के लिए अत्यंत उपयुक्त भाषा है क्योंकि इसका बहुत समृद्ध तर्कसम्मत व्याकरण है और भाषा ही बहुत व्यवस्थित और बहुत तर्कसम्मत है। इस भाषा के शब्दों को और इस भाषा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो इसका साहित्य है, वह भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज देश में बहुत सारे आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को जोड़ करके रिसर्चित की जा रही है, चाहे गीता का मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वास्तुशास्त्र का आर्किटेक्ट के साथ हो, चाहे वह वैदिक गणित का पूरा ज्ञान विज्ञान हो, और AI के साथ भी, जैसा कि अभी हमने सुना है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने AI को आधार मान करके BTech का कोर्स प्रारंभ किया है। उन्होंने विधि शास्त्र को दृष्टि में रख करके 1,00,000 का कोर्स प्रारंभ किया है। सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इससे बहुत स्पष्ट रूप से हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि संस्कृत जितनी पुरातन है उतनी अधुनातन भी है और इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में बहुत अच्छे से जा रहा है। लोग इधर उन्मुख भी हो रहे हैं और संस्कृत पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी प्रवृत्ति भी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी AI के इस पाठ्यक्रम की चर्चा की है। वो लगातार संस्कृत को समग्र विश्व में प्रचारित करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के संग्रहालयों में जाकर के वहाँ की मूर्तियों का अवलोकन करते हैं और वहाँ के लोगों को संस्कृत का संदेश देते हैं, वो सुभाषित के बारे में चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर है जब भारत का नेतृत्व ही संस्कृत के प्रति इतना समर्पित है।
1: प्रोफेसर मिश्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो आधुनिक तकनीकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानवता को ज्ञान, संतुलन और सतत विकास की नई दिशा प्रदान कर सकता है, और यह परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सशक्त सेतु है। प्रोफेसर मिश्र जी, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल अवधारणा क्या है?
0: सुनील जी, जो शिक्षा की नीतियां बनी उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शिक्षा नीति के आने से पूरे भारत के अध्ययन की परंपरा को एक नई दिशा मिली है। ऐसा इसलिए हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से उसको स्थान दिया गया, क्योंकि भारत की जो एक विशद ज्ञान परंपरा है वो विद्याएं धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा की माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनको स्थान मिल रहा है। एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इस समय नए नए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा में पीजी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू स्टडीज एक पाठ्यक्रम आया है जो पूरे देश में प्रायः 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदू अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ है और उसमें समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उसमें आज हम भारत के वनस्पति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम आज भारत के भौतिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आज विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं कि जो आज फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भारतीय फिजिक्स से भी परिचित हो, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहा है वो भारत की भी वनस्पति संपदा से अवगत हो। ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान प्रवर्तित किया था उसको आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम में स्थान मिल रहा है और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, भारतीय विद्याओं के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र मूल्यपरक और जीवनोपयोगी ज्ञान की एक ऐसी परंपरा है जिसका मूल आधार संस्कृत है। प्रोफेसर मिश्री जी, जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन को भारत की सप्त मोक्षपुरियों में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगरी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य, दर्शन, खगोल और आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार से संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत बनाए रखने में उज्जैन का ऐतिहासिक तथा समकालिक योगदान किस प्रकार का है।
0: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था महर्षि शांदीपिनी के गुरुकुल में आकर। उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की वो भूमि है जहाँ उनके दरबार में नौ रत्न थे जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे, जिनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक प्रचलित है, धनवंतरि क्षपण कामर सिंह संकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदासः ख्यातो वराह मीरो नृपते शभायाम रत्नानि वै वररुचिर नौ विक्रमस्य। विक्रमादित्य की वह भूमि रही है और विक्रमादित्य के ये नवरत्न वहां पर स्थान पाते रहे हैं। वह महाराज भर्तृहरि की भूमि रही है और उस भूमि पर सदियों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही। वहां भगवान महाकाल हैं जो कि विद्या के अधिपति देवता हैं। यह महाकवि कालिदास की भूमि रही है, कालिदास ने वहीं पर अपने काव्य का प्रणयन किया। स्कंद पुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उज्जैनी में रह करके वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। उज्जैनी सात पुरियों में एक प्रतिष्ठित पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, इन परिगणित सात पुरियों में अवंती का अत्यंत महत्व है, उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। ऐसी पावन नगरी उज्जैनी में महर्षि पाणिनी के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित है जो संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में, व्याकरण के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य वहाँ हो रहा है। उज्जैनी कुंभ भूमि भी है, यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उज्जैन अतीत की गौरवशाली विरासत और भविष्य की ज्ञान यात्रा की प्रेरणादायी संगम है। प्रोफेसर मिश्र जी, आज विश्व समुदाय भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में संस्कृत भाषा भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसको किस प्रकार से और अधिक प्रभावशाली बना सकती है, इस दिशा में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात है ये कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की समस्त संस्कृतियों को आत्मसात करके भी आज प्रतिष्ठित है। भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें किसी भी संस्कृति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यह विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, यह सर्वे भवन्तु की संस्कृति है और यह संस्कृति आती है संस्कृत से। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम श्रेयसे समुपाश्यताम, संस्कृत संस्कृति की मूल है और कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। भारत को जो प्रतिष्ठा मिली है संपूर्ण विश्व में वो भारत की संस्कृति से और भारत की भाषा संस्कृत से मिली है। तो यह जो विश्वविद्यालय हैं, जिन विश्वविद्यालयों में हम संस्कृत का अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह वस्तुतः सही पूछिए तो भारत की हम संस्कृति का ही अध्ययन कराते हैं, संस्कृति और परंपरा का ही अध्यापन कराते हैं और हमारी जो संस्कृति है वह सर्व कल्याण मूलक संस्कृति है। विश्व में कोई भी संस्कृति होगी वो हमारी संस्कृति से निश्चित रूप से उसे प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों का महनीय योगदान भी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का जो जीवन है वह निश्चित रूप से अत्यंत सुसंस्कृत जीवन होता है, क्योंकि जो मूल गुण है, जो नीति है, जो सदाचरण है, वह संस्कृत के ग्रंथों से ही आती है। हम ही पढ़ाते हैं कि मातृदेवो भव, हम ही पढ़ाते हैं कि पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम बताते हैं लोगों को कि मातृवत परदारेषु,

0: पर द्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरी, सभी स्त्रियों पर माता की बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे के द्रव्य में लोष्ठ की बुद्धि होनी चाहिए। हम अलग से छात्रों को ये बोध नहीं कराते, वो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है। पढ़ते पढ़ते वो चीजें स्वयं सीखते हैं और एक सुसंस्कृत सुसभ्य नागरिक बनते हैं, और उनका निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता, उनका महत्व केवल अपने क्षेत्र में नहीं है, वो जहां भी जाते हैं दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी अपने सद्गुणों से आलोकित करते हैं।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर मिश्र जी, की संस्कृत विश्व को शांति, सह अस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश देने वाली एक दिव्य भाषा है। प्रोफेसर मिश्र जी, यदि हमें संस्कृत को केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित न रखकर जन जन की भाषा और जीवन का हिस्सा बनाना है, तो विशेष रूप से युवाओं में इसके प्रति रुचि और आत्मीयता को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर हम आपके विचार चाहेंगे।
0: संस्कृत वस्तुतः भारत के किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, संस्कृत भारत के समस्त मनुष्यों की भाषा है, और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि यह विश्व की भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो गुण हैं, जो मूल्य हैं, वह किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के नहीं है, अपितु वह सार्वभौम है। तो संस्कृत कभी थी भी जन जन की भाषा। यदि हम संस्कृत के अतीत के बारे में इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें, तो संस्कृत अतीत में जन सामान्य की भाषा थी। शंकराचार्य के समय आपको ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से मिलने गए, तो उन्होंने वहां के जन सामान्य लोगों से पूछा कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी, इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुसंस्कृत था, हर व्यक्ति सदाचरण संपन्न था, हर व्यक्ति सुसभ्य था, हर व्यक्ति परोपकारी सद्गुणी था। तो हमारे देश में यह संस्कृत को जन सामान्य की भाषा बनानी है, और इस समय जो हमारी भारत की नीतियां हैं, जो हमारे भारत का नेतृत्व है, संस्कृत को जन सामान्य में ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, और इसके सकारात्मक संदेश भी मिल रहे हैं। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा भी संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से नहीं है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि भारत के सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करेंगे, और वस्तुतः वही विकसित भारत होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब संस्कृत आधुनिक जीवन का हिस्सा बनेगी, तभी इसका व्यापक जन आंदोलन संभव होगा। प्रोफेसर मिश्र जी, हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिस संकल्पना के साथ जुड़े हैं और जिसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है, ऐसे में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में आप संस्कृत की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व का बहुत प्रशंसक हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विकसित भारत का अभिप्राय यह है कि हम केवल भौतिकता की दृष्टि से ही विकसित न हो, हमारे भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं वो भी विकसित हों, हमारे भारत का जो जीवन दर्शन है, हमारी भारत की जो चिंतन पद्धति है, हमारी भारत की जो रहन सहन है, हमारी भारत की जो व्यंजन है, हमारे भारत के जो त्योहार हैं, हमारे भारत की जो जीवन शैली है, वो सब विकसित होगी, तभी भारत देश विकसित है, ऐसा मैं समझता हूँ, वही विकसित भारत देश होगा। हमारे संस्कृत के इस प्रभाव से जो 2047 तक मुझे ऐसा लगता है कि समस्त शिक्षा पद्धति में संस्कृत संस्कृत भाषा के रूप में भले ना प्रवेश करे, लेकिन संस्कृत के जो विचार हैं, संस्कृत का जो चिंतन है, वह हिंदी भाषा के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, उड़िया भाषा के रूप में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के रूप में हमारे साहित्य में प्रवेश कर जाएगा। निश्चित रूप से संस्कृत का जो ज्ञान विज्ञान है, वह संस्कृत मुखेन और अन्य भाषा मुखेन हमारे जीवन में उसका अवश्य अवतरण होगा।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भविष्य का भारत तभी आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बन सकेगा जब अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दृष्टि के साथ आत्मसात करेगा। माननीय कुलगुरु जी, आपने अत्यंत सरल, सारगर्भित और दूरदर्शी विचारों के माध्यम से संस्कृत दिवस के ऐतिहासिक महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, युवा शक्ति तथा विकसित भारत 2047 के संदर्भ में संस्कृत की भूमिका पर अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण हम सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। निसंदेह आपके विचार हमें यह संदेश देते हैं कि संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की एक सशक्त आधारशिला है। हम आपके अमूल्य समय, प्रेरक विचारों और इस सार्थक संवाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर अभी आप महर्षि पाणिनि

श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका, और अगला गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना, भाई बहन के प्यार पर। और दोस्तों, रिश्ते तो बहुत होते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं। भाई बहन का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है। और आज चूंकि रक्षाबंधन का भी दिन है, और ये रिश्ता जो है जिसमें शिकायतें होती हैं, नोकझोंक होती है, रूठना होता है, मनाना होता है, लेकिन इन सब से ऊपर इसमें एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना और एक भरोसा कायम रहता है। क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे का रिश्ता है और एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहने का रिश्ता है। तो राखी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि बचपन की यादों, प्यार और विश्वास तथा जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, राखी का त्यौहार केवल एक धागे का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें सम्मान, समानता और जिम्मेदारी हो। कहने का अर्थ है कि बहन की रक्षा का अर्थ उसकी स्वतंत्रता को रोकना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देना है। और भाई बहन का रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत बने, और ये ताकत ही सच्चे भाई बहन का रिश्ता होता है और राखी के रिश्ते को सार्थक करता है। तो सुनते हैं अब अगला गीत।

दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो कभी खत्म नहीं होता। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए इस रक्षाबंधन एक संकल्प लें कि रिश्तों में प्यार बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने भाई बहनों के सपनों को ऊंची उड़ान देंगे। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मुझे यानी अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और सभी को फिर से रक्षाबंधन की बंधन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
3: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
4: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
3: We have given them range of support offers.
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
5: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम के निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
7: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
9: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
10: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
11: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
12: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही

0: और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी, मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की

0: India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Vilavan Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest squash open tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान के साथ तीसरी परवाज सैलाब से मुतासरा नेपाल भेजी है। वजारत खारजा ने कहा है कि 320 भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है। सरहद के दोनों तरफ 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। सरकार के इकदामात की बदौलत मार्केट में शकर की दस्तियाबी बेहतर हुई है। शकर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाली चीनी की कीमतों में तकरीबन 20% की गिरावट आई है। मुल्क के सनअती पैदावार के इशारे की शरह तरक्की इस साल जुलाई में 6.7% रही और आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के बलास फारकास से होगा। अब खबरें तफसील से। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 547 तक पहुंच गई है, जबकि 1545 लोग अब भी लापता हैं। इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वाले अफराद और पानी के बहाव में बह जाने वाली लाशों का पता लगाने के लिए दरियाओं के किनारों और दूर दराज की बस्तियों में तलाश के काम में लगी हुई हैं। जुनूब मगरबी चीन के इलाके में 5.1 शिद्दत का जल्जला आने के तनाजुर में मजीद सैलाब के अंदेशे से हुक्काम ने मुतासरा जिलों से 800 से ज्यादा अफराद को दीगर मकामात पर मुंतकिल किया और फिर से वार्निंग जारी की है। इधर भारत ने बचाव और राहत की बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है। वजारत खारजा ने कहा है कि बुध के रोज वहां अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की इत्तला मिली है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत निजात अफराद का भी कुछ अता पता नहीं है जो दीगर मुल्कों में आबाद थे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली एक बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय शहरियों को मुतासरा इलाके से बचाकर बाहर लाया गया है।
2: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर यह हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: जनाब जायसवाल ने बताया कि चीन के इलाके में तकरीबन 400 भारतीय शहरी महफूज हैं और वो अपने घर वालों के साथ राबता कायम किए हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि पीचिंग में भारतीय सिफारतखाना इन लोगों को बाहर लाने में सहूलत पैदा करने की खातिर मकामी हुक्काम टीम लीडरों और ट्रैवल एजेंट्स के साथ तालमेल कायम कर रहा है। जनाब जायसवाल ने बताया कि सरकार ने वजारत खारजा में एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पीजिंग दोनों शहरों में भारतीय सिफारतखानों ने भी दिन रात काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की हैं। इधर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज काठमांडू रवाना हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले उन 21 यात्रियों के ग्रुप से मुलाकात की जिन्हें नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में बचा कर लाया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने बचाव कोशिश के लिए नेपाल सरकार और वहां की फौज का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वो 2 रोजा दौरे पर ताशकंद शहर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्जीफ

والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا.

وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

रंग तेरा नूर है तेरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़

0: के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परीक्षण, मापांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन करने वाली केंद्रीय सरकारी परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस आज बेंगलुरु में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements to survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed that the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu had reached Kathmandu from the flood-affected area on the

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 2 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

0: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। महिला एशिया कप का आरंभिक मैच कल थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला गया। ग्रुप ए के मैच में थाईलैंड ने हांगकांग को 6 रन से हरा दिया। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद 3 सितंबर को उसका सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by the flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and a recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in 2 flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people are still missing, as rescue teams search riverbanks and isolated settlements with survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that around 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy. These include 63 workers of the Trishuli 1 project and 21 people from Tamil Nadu. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected areas on Thursday have arrived in New Delhi yesterday. External Affairs Minister Dr. Jaishankar yesterday met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines.

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौध में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनम मतिट्टा जाएंगे और वहां अरन मुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम

आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़लें। तो आइए, अगली गज़ल पेश है कल 14वीं की।

और अब इस कार्यक्रम की आखिरी गजल आपको सुनवाने जा रहे हैं, जी हाँ, जगजीत सिंह के ही स्वर में, चिट्ठी ना कोई संदेश।

0: सी गजल के साथ अब ये कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत वायलिन वादन। कलाकार हैं टी के जयारामा अय्यर। मृदंगम पर संगत की है रामानंद ईश्वरन ने। आइए सुनते हैं वायलिन वादन राग श्री रंजनी में।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन राग श्री रंजनी में। कलाकार थे टी के जयरामा अय्यर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त 2026। सुबह के 4:53:45 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। सुबह 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर समय रहेगा देशभक्ति संगीत का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वररंजनी में आप सुनेंगे बांसुरी वादन रोहित प्रसन्ना द्वारा राग नट भैरव में सुबह 5:30 पर।

भजन व शब्द का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम वंदना में सुबह 6:10 पर, 6:40 पर आप सुन सकेंगे चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर रामचरित मानस होगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 32।

7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका रहेगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। 7:30 पर होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। सुबह 8:45 पर स्वास्थ्य पत्रिका रहेगा। 9:15 पर कार्यक्रम धरती आकाश।

सुबह 9:30 पर सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:10 पर।

सुबह 11:10 पर कार्यक्रम होगा सबरस, और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में सुनेगा तन्वी भट्टाचार्य का गायन।

0: ये थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह के 5 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
2: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के

0: 11-4, 11-2, 11-3 in the final last night. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Yeo 3-0 in the quarterfinals before overcoming fellow Indian Vichot Rani 3-2 in a thrilling semi-final. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह की 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे और जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव

रहा है, श्वास के लेने और छोड़ने का आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी।

读这里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。

印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。